FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान

0: वर्तमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आराध्य को निवेदित है आज की वंदना। सद्गुरुदेव को प्रणाम है आज की वंदना।

निर्भय निर्गुण गुण गाऊंगा, और तभी अनाहद में जो ध्वनि है, जो स्वर है, उससे जब साक्षात्कार होगा, उसका जब अनुभव होगा, तभी आपका एक चिंतन होगा और मनन होगा।

हे नाथ, कबीर की निर्गुण उपासना और सूरदास की सगुण उपासना में आप ही का चिंतन है, आप ही का दर्शन है। बस आपका तत्व समझते ही सारे अंधकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने पंडित कुमार गंधर्व, कैलाश श्रीवास्तव, नीना एवं राजेंद्र मेहता और गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा के स्वर में कुछ भक्ति पर रचनाएं सुनी। साथ में स्वर सुना आपने मोहम्मद रफी का। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु कार्यक्रम में आज का चिंतन विकास का मूल्य, आलेख डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे का, वाचन दिनेश प्रकाश गोस्वामी का।
1: विज्ञान की उपलब्धियों से इनकार करना असंभव है। विज्ञान के बढ़ते चरणों ने मानव सभ्यता का कायाकल्प कर दिया है। आज हम जिन सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, हमारी एकाध पीढ़ी के पूर्वज उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। दूर संचार, यातायात तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में नित नए आविष्कार जिस अकल्पनीय वेग से सामने आ रहे हैं, वह सब नितांत विस्मयकारी है। आज के बहुमंजिले भवन, अट्टालिकाएं, द्रुतगामी वायुयान, वातानुकूलित वाहन, आवास, होटल, यहां तक कि दुकानें एवं बाजार भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। बिजली एवं विद्युत चालित अनेकानेक यंत्र उपकरण आधुनिक सभ्यता की पहचान बन चुके हैं। यह भी सत्य है कि विज्ञान की आंधी पश्चिम से चली, किंतु वैश्वीकरण के इस युग में कोई उपलब्धि किसी देश विशेष अथवा भौगोलिक सीमा तक बंधी नहीं है। भारत जैसे परंपरागत तथा कृषि प्रधान देश में भी कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इसे किसी भी क्षेत्र में सहज ही देखा जा सकता है। किंतु विकास किसी भी रूप में हो, वह अपेक्षित मूल्य की मांग करता है। बिना कीमत चुकाए कोई वस्तु प्राप्त करने की चेष्टा आत्मघातक और अनैतिक होती है। प्रत्येक बड़ी उपलब्धि के पीछे त्याग, तप, संयम एवं श्रम की अपेक्षा होती है। साधना, धैर्य तथा कठोर परिश्रम का दूसरा नाम है। खोज भौतिक अथवा आर्थिक जगत में हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर की, त्याग एवं बलिदान का कोई विकल्प नहीं है। किंतु प्रगति के वर्तमान दौर में जाने अनजाने एक अस्वस्थ प्रतियोगिता की मानसिकता का जन्म हुआ है। आज का व्यक्ति अपने को प्रगतिशील दर्शाने की होड़ में शॉर्टकट अपनाने लगा है। यह घातक दुर्व्यसन है। रातों रात करोड़पति बनने की वासना हो अथवा किसी ऊंची कुर्सी एवं पद प्रतिष्ठा पर आसीन होने की आतुरता, इसने समाज में बड़ा विष घोला है। स्वयं तनावग्रस्त व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए खतरा बन जाता है। हमारे युग की विडंबना यह है कि बाहर से समृद्ध, संपन्न तथा विकसित दिखलाई पड़ने वाले लोग

0: भी भीतर से अशांत, आशंकित एवं कुंठित हैं। स्वार्थ, हिंसा एवं आतंकवाद जिस तरह अपने पैर पसार रहे हैं, उसमें वैभव के शिखर पर बैठे पाश्चात्य देश भी किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। वास्तव में मूल समस्या पर दृष्टिपात करने की गंभीरता का लोप हो गया है। आज का समय आपाधापी, अंधी दौड़ तथा फास्ट लाइफ का युग है। इसने मनुष्य के भीतर की शांति छीन ली है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि चिरकाल से शांति, आनंद, ज्ञान एवं अमरत्व मानव की मूल अभीप्साएं रही हैं। उनमें आज भी कोई अंतर नहीं आया है। अंतर आया है तो केवल ये कि भौतिकवाद की चकाचौंध में मनुष्य अपने हृदय में विराजमान सात्विक भावों को भूल गया है। आंतरिक पक्ष की ये उपेक्षा तथा दमन विविध प्रकार की विकृतियों के रूप में प्रकट हो रहा है। वस्तुतः संस्कार विहीन शिक्षा, आदर्श रहित जीवन एवं अनुशासन रहित अनियंत्रित भोग की लालसा सारे प्रदूषण का कारण है। वस्तुतः आध्यात्मिकता के अभाव में कथित भौतिक प्रगति निरर्थक हो जाती है। यदि हृदय खोखला और मन खोया खोया सूना सूना है, तो अत्याधुनिक विलास के संसाधन भी उद्वेग की ही वृद्धि करेंगे। आज की जो सभ्यता प्रगति के दंभ में उन्मत्त है, उसका हृदय की आंतरिक सुख शांति से कोई सरोकार नहीं है। ध्यान देने पर स्पष्ट होगा कि वर्तमान युग विकास की एक अधूरी और खंडित अवधारणा के पीछे पागल है। विकसित तथा पिछड़े की कसौटी भी भ्रामक है। जीवन संतुलन एवं सामंजस्य की अपेक्षा रखता है। तुलसीदास ने लिखा है, खर को कहा अर्ग जालेपन, भूषण मरकट अंग। बंदर का स्वभाव लेकर बाह्य साज सज्जा से भद्र दिखाई पड़ने का असफल प्रयास वर्तमान समाज पर सबसे सटीक टिप्पणी है। आवश्यकता है विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आंतरिक ज्योति को दीप्त करने की। विकास का वही सम्यक चित्र होगा।
1: विकास का मूल्य था आज का चिंतन। आलेख वाचन डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे का और वाचन दिनेश प्रकाश गोस्वामी का था। इसी के साथ आज का चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर श्रीकांत पटनायक का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर श्रीकांत पटनायक का था और संगीतकार थे सतीश भाटिया। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रातः 7 बजे। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनेंगे प्रातः 7:31 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शांति माथुर की लिखी रासलीला वृंदावन महिमा, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की रहेगी। दिन में 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज भेंट वार्ता, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है नियमित जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर शैली गुप्ता से बातचीत करेंगी उषा पांडे। कार्यक्रम आबोहवा में आज का विषय रहेगा साफ नदी साफ सोच, वाचन विजय मताई का रहेगा। समय प्रातः 9:25। कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप दिन में 10 बजे। दिन में 9:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में दान बिहारी बिजवासी से भजन। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज की कलाकार होंगी मीरा दीक्षित। आप सुनेंगे इनसे चंद भजन। मैंने सुनेंगे अपना कार्यक्रम वनितालोक दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर सी

बवार से वार्ता, रेड क्रॉस दिवस एक जानकारी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण दिन में 2:30 पर रहेगा और युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे श्वेता सिंह धनगर से वार्ता रेड क्रॉस डे। संध्या 6:15 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता बकरियों की नस्लें, उपयोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार, इस विषय पर ये जानकारी रहेगी। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का। संध्या 6:45 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम संध्या वंदन, भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे अभ्य साहित्यिक कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे मनमोहन गुप्ता से रेखाचित्र नीतू मौसी। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अमर सिंह राठौर की नौटंकी, प्रस्तुति TN शर्मा की रहेगी। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राम चतुर मलिक से ध्रुपद गायन, जो राग दरबारी में निबद्ध रहेगा। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम खेती की बातें में आज का विषय है बासमती धान की उन्नत किस्में और पौध तैयारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: सुगंधित धान विश्व में अपनी एक विशिष्ट सुगंध तथा स्वाद के लिए भली भांति जाना जाता है। इस धान की खेती भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों से की जा रही है। सामान्यतः बासमती धान की खेती सामान्य धान की खेती के समान ही की जाती है, किंतु बासमती धान की अच्छी पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि की। भूमि, जलवायु एवं अन्य संबंधित कारक बासमती धान की सुगंध एवं स्वाद को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बासमती धान की खेती के लिए अच्छे जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी उपयुक्त रहती है। आइए जानते हैं सुगंधित धान की प्रमुख प्रगतिशील या उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। पहली प्रजाति है टाइप 3। इसकी उपज होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इस वैरायटी की अवधि है 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति है बासमती 370। ये भी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1। इसकी उपज होती है लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इसकी अवधि है 130 से 135 दिन। एक अन्य उन्नतशील प्रजाति है पूसा सुगंध 2। इसकी भी उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा पकने की अवधि है 130 से 135 दिन। इसके अलावा जो उन्नतशील प्रजाति हैं वह हैं पूसा सुगंध 3, पंत सुगंध 1, पूसा 11-21। ये हमारे ब्रज क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी पानी निकल जाने के बाद 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बेंडिज्म को 8 से 10 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज में मिला दिया जाए। उसके बाद उसे छाया में अंकुरित करने हेतु के बाद नर्सरी में डाला जाए। बीज की मात्रा तथा बीजोपचार की विधि इस प्रकार रखनी चाहिए। प्रजाति के अनुसार बासमती धान के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। 1.5 ग्राम कार्बेंडिज्म प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पौध की तैयारी कैसे करें। बासमती धान की पौध तैयार करने के लिए उपजाऊ अच्छे जल निकास तथा सिंचाई स्रोत के पास वाले खेत का चयन करना चाहिए। 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 हेक्टेयर खेत की रुपाई के लिए पौध तैयार की जा सकती है। बीज की बुवाई का उचित समय जल्दी पकने वाली प्रजातियों के लिए जून का दूसरा पखवाड़ा है तथा देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए बुवाई मध्य जून तक कर देनी चाहिए। पौधशाला में सड़ा हुआ गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को मिट्टी में भली प्रकार से मिला देना चाहिए। खेत को पानी से भरकर 2 या 3 जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। खेत की छोटी छोटी तथा थोड़ा ऊंची उठी क्यारियों में पाट लेना चाहिए। बीज की बुवाई से पहले 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 225 ग्राम अमोनियम सल्फेट

0: या 100 ग्राम यूरिया तथा 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई, कीट रोग तथा खरपतवार की रोकथाम हेतु उचित प्रबंधन करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था बासमती धान की उन्नत प्रजातियां और पौध तैयारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, साहिर लुधियानवी का गीत, संगीत सचिन देव वर्मन का। फिल्म प्यासा के इस गीत को आवाज़ दे रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी।

साहिर लुधियानवी की शब्द रचना को संगीत दिया सचिन देव बर्मन ने, और आवाज दे रहे थे गीत को मोहम्मद रफी और गीता दत्त फिल्म प्यासा के लिए। और आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत क्रम में अगला गीत। इस गीत को लिया काला बाजार फिल्म से, शैलेंद्र की शब्द रचना संगीत सचिन देव बर्मन का, स्वर दे रही है गीत को गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा।

फिल्म काला बाजार में अभी आपने सुना गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा को, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में जोहरा बाई अंबेवाली को फिल्म महल में। जे नक्ष का गीत, संगीत खेमचंद प्रकाश का।

जोहराबाई अंबेवाली और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म महल में। संगीत खेमचंद प्रकाश का था। और आइए सुने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। इस फिल्म से ये गीत, शब्द रचना मजू सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव वर्मन का। आवाज दे रहे हैं इस गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार।

जानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे की, तो थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने

0: के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 20 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज

0: के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
2: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
3: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जब फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 1 केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक 1 की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

एनसीबी की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब आरंभ हुए है हमारो दैनिक कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनवे बारे सभी भैया बहनन को हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओ, ब्रज 84 कोस को अति पावन ये क्षेत्र और वामे कहे हैं कि 12 वन हैं और श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन और ब्रज 84 कोस को ये क्षेत्र समय समय पे भक्तकालीन के जो रत्न भये बिन्ने अपनी रचनान के माध्यम से ऐसो रस ऐसो साहित्य बिखेरो कि वहाँ में श्रद्धालु ने वहाँ सरोवर में नित्य स्नान किए और रस को अनुभव कियो। फिर चाहे सूरदास जी हों, मीराबाई हुए, कबीरदास हुए, गुरु नानक हुए, इन्हें या धरती पे आए के या को धन्य कियो। समय समय पे अनेक संत यहाँ आए और बिन्ने हमारे ब्रज के लाड़ी लाल ते नेह लड़ायो। भैयाओ, याई सो ये भूमि ननंते जाए है चूमी, कहे हैं ऐसो आनंद है ब्रज को भक्ति भाव को जो को यहाँ पे परिक्रमा लगाए है और ठाकुर जी को ध्यान करे है वाकु नित शीतलता को अनुभव होए है। और भैयाओ, आज के यह कार्यक्रम में आप लियो आनंद वृंदावन महिमा रास लीला को सुन के, लेखक शांति माथुर, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिकी। भैयाओ लियो आनंद या रास लीला को।

0: प्रीतम जू आपके नित्यारास को समय है गयो है, सो आप कृपा करके रास मंडल में पधारो।
1: अच्छा सखी, मैं श्री किशोरी जी से आज्ञा ले लूं। हे किशोरी जू, आपके रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके रास मंडल में पधारो।
2: पधारो प्यारे।

0: हे किशोरी जू, आज आपको मन कछु अनमनो सो है रहो है। आप यदि प्रसन्न होए तो अपनी उदासीनता को कारण बता मैं।
1: हे ललिता जी, आप कहा कह रही हो? मैं प्रसन्न है के उदासीनता को कारण कैसे बता सकूं हूँ? वैसे मैं आप भी तो सदा प्रसन्न ही रहूं।
2: हे वृषभान दुलारी जू, आप कछु समझो, पर आज आपकी मुद्रा विशेष अनमनी है।
3: अच्छा बताओ, है के लाए?
1: हाँ सखी, मैं आज सोच रही ही कि प्यारे श्याम सुंदर के संग जा भूमि में आनंद सो रहूं और लीला करूं हूं, ता भूमि को कछु गुड़िगान सुन के सुख प्राप्त करूं। अरी सखी, यही कारण मेरो मन कछु उदास है रहो है।
4: तो किशोरी जू, का आप वृंदावन की महिमा सुनबो चाहो?
1: हाँ सखी,
0: पर एक बात तो बताओ कि जा वृंदावन में आप नित्य लीला तो करो हो, फिर या के गुणगान सुनवे की अभिलाषा कैसी?
2: जाको नित्य संग आपको प्राप्त है, वासो बिछुड़न को डर आप में है का?
1: अरे सखी, भूल गई का? संयोग में वियोग और वियोग में संयोग छिपियो रहे है। नेक्स्ट सुनो तो सही, कौन गाय रहे हो?

0: सुन रही हो ललिता जो, मिले रहत मानो कबो मिले ना, अरी सखी मिलन ऐसो ही होना चाहिए।
1: हे विशाखा जू, विशाखा जू आई ललिता जू।
2: विशाखा जू आप आए गई, देखो आज श्री

0: किशोरी जू को मन वृंदावन की महिमा सुनवे को करी रहो है, सो आप उनको श्री वृंदावन की महिमा सुनाओ।
1: हे किशोरी जू, ये वृंदावन कौन को है?
2: कौन को बताऊं सकी? मोए तो लगे प्यारे श्याम सुंदर ही जा वृंदावन के स्वामी हैं।
3: हे किशोरी जू, वृंदावन की स्वामिनी तो आप ही हो।
4: सुनो, हमारा जी वृंदावन हमारे हृदय में कैसे निवास करे है,

0: हे किशोरी जू, माया और काल के प्रभाव सो मुक्त जे वृंदावन अनुपम और अलौकिक है। पर मन विचारो यहाँ कहा कर सके है, मन और बुद्धि की पकड़ सो बहुत दूर है हमारो जे वृंदावन।
1: हे प्यारी जू, यह वृंदावन के स्वरूप में परिवर्तन नाए हुए है। आप और प्यारे श्याम सुंदर यह वृंदावन की भूमि में लीला करो हो।
2: हे किशोरी जू, यह वृंदावन की भूमि में लता पताउ चैतन्य है। रसिक जन यह वृंदावन की लीलान को आनंद लेते रहे हैं। सुनो संत कैसे भाव विभोर है के यह वृंदावन की महिमा गाए रहे हैं।

0: आहा हा देखो मैं इतेक देर ते कुंजन में ठाड़ो ठाड़ो या रस को आनंद ले रहे हो कि जे सखी प्यारी जूखू श्री वृंदावन की महिमा सुनाए रही है। चलू मैं हूँ संत को भेष बनाए के इनके समीप चलू और या मधुर वार्तालाप को अधिक आनंद लो।
1: अलाक खोल दे पलाक देख ले दुनिया की।

0: इनके स्वागत का प्रबंध करना चाहिए।
1: आलाक निरंजन।
2: बाबा दंडात।
1: प्रसन्न रहो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होए। सखी, कहा हम यहाँ स्थली पे कछु देर विश्राम कर सके हैं। यहाँ की कुंज लता बड़ी मनोरम और आनंद देवे वारी लगे हैं।
0: पधारो महाराज, आपको आगमन कहाँ ते भयो है, आप यहाँ बिराजो।
1: अवश्य बैठेंगे सखी। सखी, हम काशी सो आए रहे हैं और बद्री नारायण जावे को विचार कर रहे हैं। या ब्रज की बड़ी महिमा सुनी, सो हम हूँ इतने चले आए।
0: महाराज, आप हारे थके प्रतीत है रहे हो, आपकी सेवा में ये फल अर्पित है।
1: सो तो हम पाए लेंगे सखी, पर गोपी या ब्रज वृंदावन को वातावरण कछु समझ में ना आयो। यहाँ की भूमि बतावे है कि यहाँ के लोगन में विवेक को अभाव है। अपने स्वरूप को ना पहचान के आवश्यकता ते ज्यादा विनम्र है वृंदावन की प्रकृति।
3: जी संत, कहा कह रहे हैं सखी, वृंदावन की प्रकृति को अध्ययन करवे जी कोई ब्रह्मचारी आयो है का विवेक की टेक राख वे वारो या वृंदावन की प्रकृति को आनंद लेवे में असमर्थ ही रहेगो। विवेक में साधन प्रधान है, पर या वृंदावन की भूमि में कौन साधन है और कौन साध। सखी जी कहो तो बड़ो ही कठिन है। विशाखा जू, आप एक पत्तो सुनाओ, आज तो वृंदावन रस के अतिरिक्त और कछु अच्छो ही नाय लगे है।

0: हे किशोरी जू, मैं आ गया हूँ।
1: आपको जो श्रृंगार कितना अद्भुत और कितना अनुपम है।
0: हे किशोरी जू, ये श्री वृंदावन की ही कृपा है।

मैया बाबा आपने सुनी रासलीला वृंदावन महिमा, शांति मातृ की लिखी या रासलीला को प्रस्तुत कियो हरिबाबू कौशिक ने। यही के साथ आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम हम संपन्न हुए। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता

0: के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया

0: जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक

0: Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि. कार्यक्रम गीतांजलि में आइए सुनते हैं ये नगमा फिल्म बाजार से. मीर तकी मीर के शब्द, संगीत खय्याम का और स्वर लता मंगेशकर का.

0: मैं पिरोया खय्याम ने और स्वर दिया लता मंगेशकर ने फिल्म बाजार से था ये नगमा। और आइए सुनते हैं गीतांजलि क्रम में अगला गीत फिल्म सिलसिला से, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म सिलसिला में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, शब्द कैफी आजमी के, संगीत मदन मोहन का। फिल्म हिंदुस्तान की कसम के इस गीत को आवाज दे रहे हैं मन्ना डे।

जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के उन सभी सेविंग्स बैंक खाता धारकों के लिए है जिनके अकाउंट पिछले दो वर्षों से ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी तरह का लेन देन नहीं होने के कारण सक्रिय नहीं है। आपसे अनुरोध है कि अपने अकाउंट का पुनः केवाईसी किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ जाकर या डिजिटल चैनल जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप, एटीएम, व्हाट्सएप बैंकिंग, वीडियो केवाईसी इत्यादि के माध्यम से तुरंत कराएं। कृपया ध्यान दें कि बिना केवाईसी की प्रक्रिया पूरी किए निष्क्रिय अकाउंट से निकासी करने की अनुमति नहीं है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम में किशोर कुमार को, फिल्म कुदरत में गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत राहुल देव वर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में, और आइए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को AR रहमान ने संगीत में पिरोया, और आवाज दे रहे हैं इस गीत को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म पुकार से ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुकार से ये गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत एआर रहमान का, और आवाजें थी इस गीत में कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साथियों की। इसी के साथ आज का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9 बजने को हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनने जा रहे हैं भेंट वार्ता। आज का विषय, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है नियमित जांच। आज की विशेषज्ञ डॉक्टर शैली गुप्ता और आपसे बातचीत कर रही हैं उषा पांडे।
1: जिंदगी की दौड़ में इतना भी न खो जाना कि अपनी ही सेहत का हिसाब भूल जाना। वक्त पर जांच कराना ये भी एक जिम्मेदारी है, वरना छोटी सी लापरवाही और सामने बड़ी बीमारी है। जी हाँ साथियों, छोटी सी लापरवाही और सामने बड़ी बीमारी खड़ी हो जाती है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी ही बल्कि खुद के प्रति सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें तो ये समस्या पैदा ही ना हो, और अगर शुरुआत हो भी जाए तो समय से जानकारी होने पे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम मात दे सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, यदि हम समय पर शरीर की जांच कराते रहें तो हम किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। इसी संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पैथोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर शैली गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, हम जांचों के बारे में आज अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी है क्या?

0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है बीमारियों को उनकी शुरुआत में पहचानना, जब उनके लक्षण बहुत कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, उस समय पर हम जांचों के द्वारा उस बीमारी को पहचाने और सही समय पर उसका इलाज कर सके। तो यही मेन रोल है पैथोलॉजी का।
1: जी, तो जब आपके पास मरीज आते हैं, व्यक्ति आता है जांच के लिए, तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
0: सबसे पहले मरीज अगर किसी डॉक्टर को दिखाकर या कंसल्ट करके आता है, तो हम उसका जो भी बीमारी कंसर्न बीमारी है उसके टेस्ट को करके उसको रिपोर्ट देके उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और अगर हमारे पास खुद से मरीज आता है, तो हम उसके लक्षणों की पहले जानकारी करते हैं कि उसके क्या परेशानी उसको हो रही है, उसके स्वास्थ्य में उसको क्या दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी, थकान होना या कोई और परेशानी, उससे रिलेटेड हम उसको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसको स्वास्थ्य पैकेज भी होता है, जिसमें जनरली सारा बॉडी के मेन मेन टेस्ट जो होते हैं वो करके उसकी हम बीमारी को पहचान कर उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
1: जी, जैसे छोटी छोटी बीमारी हैं उनके टेस्ट हम कराते हैं, तो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी है ऐसी?
0: जनरली महिलाओं और बच्चों में जो आमतौर पर देखे जाने वाली बीमारी है वो है अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, जो कि खान पान में असंतुलन की वजह से सबसे ज्यादा होती है। बच्चों में इसकी वजह से थकान रहना, उनका विकास पे असर पड़ना, ये होता है। इसकी सिंपल सी एक सीबीसी की जांच और जीपीपी की जांच से हम अनीमिया का प्रकार पता कर सकते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी से है तो हम उसको आयरन सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं सही समय पर, ताकि वो सही दिशा में उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा अगर B12 डेफिशिएंसी से है तो हम उसके सप्लीमेंट्स B12 के देके उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि उसके विकास पे कोई असर ना पड़े। इसी प्रकार से महिलाओं में बहुत ज्यादा रक्त स्राव होने से या महीने में परेशानी की वजह से अनीमिया से की वो शिकार हो जाती हैं, और खान पान में आपूर्ति की वजह से भी, तो उनके आयरन सप्लीमेंट्स देके हम उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे और महिलाएं एक परिवार की आधारशिला होती हैं, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उनमें अनीमिया है तो सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेके उनका इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने अनीमिया की बात की, 40+ होते ही महिलाओं में जो मेनोपॉज की समस्या पैदा होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं खून की कमी का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो इसके लिए कौन सी विशेष जांच कराई जाती है?
0: बिल्कुल, पहले तो सीबीसी की जांच होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अगर 11 से कम है तो महिलाओं में अनीमिया होगा। उसके लिए फिर टाइप के लिए अगर 10 से बहुत ज्यादा कम होता है तो आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है, उस पर आयरन दिया जाता है। और महिलाओं को खान पान के लिए विशेष बातें बताई जाती है कि हरी सब्जी का सेवन करें, और इस तरीके से उनका जो माहवारी में अगर ज्यादा खून जा रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कोई और बीमारी जैसे फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस तो नहीं है, उन चीजों को भी हम जांचों के द्वारा ही निदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसके लिए जांच की जाती है पैप स्मियर, जो कि जनरली 40 से 45 साल की उम्र के बाद हम महिलाओं में करते हैं, ताकि उनमें कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सके और सही समय पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, खुद से अपने स्तनों की जांच करें। अगर कोई भी गांठ उन्हें प्रतीत होती है कि उनके है, तो उसको वो जल्दी से जल्दी FNAC की जांच कराएं। FNAC के लिए मिथ है कि सुई की जांच से कैंसर फैल जाता है, बिल्कुल गलत है। सुई की जांच से कभी कैंसर नहीं फैलता, इससे हम जल्दी से जल्दी स्टेज में कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी बायोप्सी करा के सही समय पर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इन चीजों पे ध्यान दें, और अगर कोई भी गांठ उन्हें पता चलती है तो उसको पहले उसका FNA कराएं और उसका सही समय पर इलाज कराएं।
1: बच्चों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपने उनमें भी एनीमिया की शिकायत बताई, तो क्या कुपोषण भी इसे हम कह सकते हैं?
0: बिल्कुल, कुपोषण भी इसी से रिलेटेड है। अनीमिया के साथ कुपोषण होता है, आहार नियमित ना, सही आहार ना लेने के कारण ये होता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो बच्चों में आमतौर पर कुपोषण के साथ आती है, और लंबे समय तक खांसी जुकाम रहना और वजन की कमी होना, ये मेन दो लक्षण हैं। और कहीं कभी कभी कहीं गले में गांठे बन जाना, जिसकी डायग्नोसिस के लिए फिर हमें FNAC, जिसे सुई की जांच कहा जाता है, वो करते हैं। और सुई की जांच से हम सैंपल लेके उसको कंफर्म करते हैं कि ये TB की बीमारी है या इन्फेक्शन की बीमारी है, रिएक्टिव है या ट्यूबरक्लोसिस है। और इस तरीके से हम टीबी

0: का ट्रीटमेंट सही समय पर बच्चों में शुरू करके उसको फैलने से रोका जा सकता है। जांचों का मेन उद्देश्य होता है उसको आगे बढ़ने से रोका जाए और सही समय पर उसको ट्रीट किया जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपके पास बच्चे आते हैं तो आज के समय में आप ज्यादा क्या परेशानी देख रही हैं अपने जांच के दौरान कि जो बच्चों में समस्या ज्यादा आ रही है?
0: बच्चों में मेन तो खून की कमी, आयरन एनीमिया, और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, और खान पान से रिलेटेड इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, टाइफॉइड आज के समय में बहुत ज्यादा, डिहाइड्रेशन, बच्चे पानी कम पीते हैं या बाहर का खा लेते हैं या बाहर का पानी पीते हैं, जिस वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस समय, इस सीजन में, गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को बाहर का पानी ना दिया जाए। अगर उनको संक्रमण है तो उन्हें उबला हुआ पानी दें और खाने में भी उन्हें साफ चीजें मिलें। इसके अलावा बच्चे बाहर से आके हाथ धोकर खाना खाएं ताकि उनमें इन्फेक्शन रोका जा सके, उससे रिलेटेड और बीमारियां भी रोकी जा सके।
1: साथ ही डॉक्टर साहब, और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जैसे थायराइड है और डायबिटीज है, इसके साथ और भी कुछ अतिरिक्त जांचें जो आपके सामने ज्यादातर आती हों?
0: बिल्कुल, इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट के, जिसमें हम लिवर की पूरी जांचें करते हैं, लिवर में हेपेटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, आज के अभी समय में हेपेटाइटिस भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, अलग अलग तरीके से इनका संक्रमण होता है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी की जांच, हमारी किडनी सही काम कर रही है नहीं, हमारा सीरम क्रिएटिनिन जो किडनी का मेन मार्कर होता है उसका लेवल ठीक है या नहीं, क्योंकि कई बार जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज होती है उनमें क्रिएटिनिन बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसलिए जरूरी है कि शुगर के साथ वो अपना KFT भी कराएं ताकि उन पता चल सके कि कहीं शुगर का किडनी पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताता है, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये जांचों के थ्रू पता चलता है। और अगर उनमें कुछ गड़बड़ या कुछ असमानता आती है तो फिर हमें इको के लिए रिकमेंड किया जाता है, पेशेंट को इको कराना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज के लिए HbA1c जो 3 महीने की नियमित शुगर बताता है, शुगर अगर हम आज करेंगे तो वो हमें आज का स्टेटस बताएगा, अगर हम HbA1c की जांच करेंगे तो हमारे 3 महीने से हमारी शुगर कितनी कंट्रोल में है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो जरूरी है कि जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी है वो एक 3 महीने के अंतराल पर एक HbA1c जरूर कराएं।
1: यही बात हमारे श्रोताओं को पता नहीं रहती है और इसी के चक्कर में बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज के बारे में बताया, ब्लड टेस्ट के अंतर्गत जैसे अब मलेरिया, आजकल थायराइड और डायबिटीज और बड़ी बड़ी बीमारियों को जिनको हम जान रहे हैं, कैंसर वगैरह, उसके चक्कर में हम कहीं ना कहीं मलेरिया और टाइफाइड को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले लेती है धीरे धीरे बुखार आना, तो इसके लिए किस तरह की जांचें होती हैं?
0: पहले के समय में एक बुखार को एक दवाई देके ठीक किया जाता था, अब आधुनिक समय में बुखार का कारण जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम टेस्ट, जांचें कराते हैं। फीवर का मेन कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके अलावा टाइफाइड की वजह से भी फीवर आता है, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार आता है।
1: जी,
0: इसलिए जांचें बहुत जरूरी हैं। सिर्फ बुखार की दवाई ले लेने से इलाज नहीं होता, जरूरी है कि हम बुखार का कारण जानें। इसलिए मलेरिया के लिए हम मलेरिया का टेस्ट करते हैं, डेंगू कार्ड लगाए, एंटीजन एंटीबॉडी होता है। इसके अलावा यूरिन में अगर पेशाब में जलन के साथ बुखार आ रहा है तो हम पेशाब की जांच करते हैं। तो जरूरी है कि हम कारण जानें फिर दवाई लें और सही समय पे लें ताकि उसको सही समय पे ठीक किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, बुखार की बात हम कर रहे थे, बुखार के भी टाइप होते हैं, जैसे बुखार सब में आता है, टाइफाइड में भी आ रहा है, मलेरिया में भी आ रहा है, लेकिन केवल एक बुखार मान लेने से यानी जांच के अभाव में हम इलाज प्रॉपर नहीं कर सकते। आपने यूरिन टेस्ट की बात की, तो यूरिन टेस्ट में जो इन्फेक्शन के थ्रू हमें बुखार आता है, तो एक कल्चर टेस्ट भी होता है, उसके बारे में बताइए।
0: जी बिल्कुल, यूरिन कल्चर हम करते हैं, जनरली ये कल्चर का टेस्ट के एंटीबायोटिक्स लेने से पहले करते हैं और अर्ली मॉर्निंग का फर्स्ट स्ट्रीम यूरिन हमें लेना होता है, मतलब जो हमें सुबह सुबह उठ के कंटेनर में सैंपल कलेक्ट करना है वही जांच सबसे सटीक होती है और उसमें हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया है और इसके अलावा उसमें कौन सी दवाइयां काम करेंगी। जनरली दवाइयां हम ले लेते हैं वो काम नहीं करती और इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। कल्चर की जांच से ये संभव होता है कि सही एंटीबायोटिक शुरू होती है और वो सही समय पर ठीक होती है और बार बार नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, टेस्ट कराने से पहले मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: टेस्ट कराने

0: से पहले मरीज को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सही जगह पे टेस्ट कराए, जैसे कि मैं जहां काम करती हूँ वहां डॉक्टर की निगरानी में सारी जांचें होती हैं, आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है और सभी रिपोर्ट्स अच्छे तरीके से करके उनको 2 घंटे के अंतराल में, नियमित जांचें हम 2 घंटे में दे देते हैं। और इसके अलावा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर डायबिटीज का टेस्ट कराना है तो वो सुबह खाली पेट जाके टेस्ट कराएं और 2 घंटे बाद का शुगर टेस्ट कराएं।
1: जी
0: थायराइड के लिए खाली पेट की कोई जरूरत नहीं होती। लिपिड प्रोफाइल अगर हमें करानी है तो हमें खाली पेट जाना है। इसके अलावा बाकी जांचें किसी भी समय हो सकती हैं। कभी भी कोई गांठ होने पर उसको नजरअंदाज ना करें, FNAC की जांच कराएं और सही समय पर इलाज शुरू करें।
1: जी डॉक्टर साहब, लोगों में ये गलत फहमी भी है कि जैसे जो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ब्लड को निकालने के लिए, तो कहते हैं कि अगर एक का प्रयोग दूसरे में, तो इसको भी हमारे श्रोताओं से आप क्लियर कर दीजिए।
0: पुराने समय में बहुत मिथ रहे हैं, हमें उन सबसे आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आधुनिक समय आ चुका है, सभी स्टैंडर्ड पैथोलॉजी और हॉस्पिटल्स में आजकल नई सिरिंज सामने मरीज के खोल के यूज की जाती है, रीयूज बिल्कुल नहीं होता और बहुत अच्छी क्वालिटी की सिरिंज यूज करते हैं। कई बार पेनलेस, उनमें पता भी नहीं लगता है मरीज को और निडल प्रिक हो जाता है, और उस तरीके से हम जांचे लेते हैं और वैक्यूटेनर्स का भी प्रयोग करते हैं। बार बार अलग अलग सिरिंज में ना सैंपल लेके एक ही बार में हम सैंपल को लें, और इसलिए मरीज घबराए नहीं और सही समय पे, सही स्थान पे, सही डॉक्टर का चुनाव करके वो अपनी जांचें कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं से?
0: स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसकी सही जानकारी ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरा काम है बीमारियों को उनकी शुरुआत में पहचानना, अक्सर तब जब लक्षण भी साफ नहीं दिखाई देते। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि समय पर जांच सबसे अच्छा बचाव है। इसके अलावा नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, संतुलित आहार और व्यायाम को अपनाएं और अपने शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, बीमारी से लड़ने से बेहतर है उसे होने से पहले पहचान लेना। धन्यवाद।
1: चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि खुद का ख्याल रखना भी इबादत से कम नहीं। ये जिस्म अमानत है, इसे नजरअंदाज करना सही नहीं। चेकअप हो वक्त पर तो डर की कोई बात नहीं, वरना तकदीर भी कभी कभी देती साथ नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता। आज का विषय था स्वास्थ्य के लिए जरूरी है नियमित जांच। आज की विशेषज्ञा थी डॉक्टर शैली गुप्ता और आपसे बातचीत कर रही थी उषा पांडे। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

प्रातः के 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आप सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला

0: रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कवि चौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का एसटीपी, 141.43 करोड़ का कजाकपुरा आरओबी और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपश्यना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
1: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित पीएसी 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
0: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहां वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गाँव में मगई नदी पर लोगों ने श्रम

0: स्नान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। इसके
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए आबो हवा। आज का विषय साफ नदी साफ सोच। आलेख वाचन विजय मिताई का।
3: नदियां जीवित प्राणी को प्रकृति के द्वारा दिए गए

0: अमूल्य उपहारों में से एक है। नदियों का धरती पर वही स्थान है जो शरीर में धमनियों का। धमनियां खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है तो नदियां जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती हैं। कलकल करती नदी की धारा का दृश्य हमें सुख और संतोष प्रदान करता है। जीव समुदाय इसके जल को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इससे फसल सींची जाती है। आधुनिक युग में नदी जल को रोककर बांधों का निर्माण किया गया है जो जल की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को भी पूर्ण करता है। परंतु आज मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नदियों को बेहद प्रदूषित व गंदा कर दिया है। आज जरूरत है मनुष्य को अपनी सोच बदलने की। आज जल प्रदूषण इस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब हमें इन्हें स्वच्छ व साफ करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। नदियों में किसी भी प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट न जाए। किसी भी प्रकार का मानव जनित अपशिष्ट तथा पॉलीथिन इत्यादि को नदियों में न गिराया जाए। लोगों का अंतिम संस्कार जो कि नदियों में किया जाता है वह पूरी तरह बंद होना चाहिए, जो कि लोगों की सोच बदलने से ही संभव हो सकता है। एक तरफ तो लोग भगवान से उतारे हुए फूल माला मंदिर से उतार कर नदियों में प्रवाहित करते हैं, यह सोचकर कि नदियों से ज्यादा पवित्र स्वच्छ व साफ स्थान दूसरा नहीं हो सकता, तथा दूसरी ओर कई स्थानों पर इसी नदी के किनारे लोग अपनी दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होते पाए जाते हैं। अब हमें ही यह सोचना है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं या दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि नदियां हमें पीने का शुद्ध पानी देती हैं, खेत सींचने के लिए पानी देती हैं। नदियां कोई कचरा पात्र नहीं है जो हम अपने अपशिष्टों को उसमें प्रवाहित कर दें। नदियां सिर्फ मनुष्य प्रजाति के लिए ही नहीं वरन पशु पक्षियों सभी के लिए जीवनदायिनी है। नदी जल की निर्मलता को बनाए रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि जब मनुष्य की क्रूरता की अति हो जाती है तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, जैसा कि हम कुछ समय पूर्व ही उत्तराखंड, कश्मीर व विश्व के अनेक स्थानों पर पानी का रौद्र रूप सुनामी के रूप में देख चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों को एक पवित्र स्थान माना है। नदियों के किनारे घोर तपस्या की है, नदी में स्नान करके स्वयं को अत्यधिक पवित्र माना है। वही सोच अब हमें विकसित करनी है। कहते हैं कि नदियां पाप धोती हैं, परंतु नदियां अब शहर की गंदगी साफ करते हुए ज्यादा नजर आती हैं। यह सभी को ध्यान रखना चाहिए कि नदियां नहीं होंगी तो मानव सभ्यता का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो हमें दबाव में करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत और तरीका है जो कि हमारे अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जीवन के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, अपने आसपास की हो, अपने काम करने की जगह हो, पालतू पशुओं की जगह हो या नदियों की हो। हम सभी को निहायत जागरूक होना चाहिए और ऐसे छोटे छोटे कार्यों को अपनी आदत में अवश्य शामिल कर लेना चाहिए, और यह बहुत आसान भी है, बस हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इसकी शुरुआत केवल हर अभिभावक के द्वारा भी की जा सकती है। अतः साफ नदी होगी हमारी साफ सोच।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय था साफ नदी और साफ सोच। वाचन विजय मिताई का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुति सत्यव्रत सिंह की है।

एक बार एक पत्र लेखक ने समाचार पत्र के साथ दो कतरनें बापूजी के पास भेजी। एक खबर में अमेरिका के एक डॉक्टर हेरोल्ड ब्लेजर द्वारा अपनी अर्धविक्षिप्त कन्या को क्लोरोफॉर्म देकर मार डालने की बात कही गई थी और बताया गया था कि उसमें मुद्दा केवल यही था कि उनकी मृत्यु के बाद बेटी को किसी पर बोझ की तरह न छोड़ा जाए। डॉक्टर को अदालत ने निरपराध घोषित किया। दूसरी खबर ये थी कि एक फ्रांसीसी अभिनेत्री द्वारा अपने प्रेमी की प्रार्थना पर उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए गोली मार देने की, उसे भी अदालत ने निरपराध घोषित किया। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ जो सर्वभूत हिताय की बात कही जाती है, बापू ने कहा कि मैंने ये चिट्ठी और खबर इसलिए दी है कि अपनी स्थिति में समझाने में मुझे इससे मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि पत्र लेखक यंग इंडिया के बड़े ही सावधान पाठक हैं, मगर उन्होंने मेरी बातों को इतने गलत रूप में समझा जो उनके पत्र से स्पष्ट है। मेरा मत है कि डॉक्टर ब्लेजर छूट भले ही गए हों, मगर मेरी समझ के अनुसार तो उन्होंने अपनी लड़की की जान लेकर भूल की। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने अपने आसपास रहने वालों के मन में भी दया भाव होने का भरोसा नहीं किया। यह मान लेने का कोई कारण न था कि दूसरे उस लड़की की देखभाल नहीं करते। कुत्तों के मामले में जो स्थिति मैंने समझी वह डॉक्टर ब्लेजर की मन स्थिति से बिल्कुल ही अलग है। मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि अविकसित प्राणियों के आत्मा होती ही नहीं है। मेरा विश्वास है कि नीची श्रेणियों के प्राणियों के भी आत्मा होती है। इससे भी अधिक वजनदार दूसरी कठिनाई है जिसे कि दूसरे भाई पेश करते हैं। आपने जो स्थिति पसंद की है मैं उसे समझता हूँ। यही एकमात्र वही स्थिति है। अगर आपका तर्क क्या ज्यादातर लोगों के लाभ वाले उपयोगितावाद के सिद्धांत के रूप को ग्रहण नहीं कर लेता, अगर आपकी यही स्थिति हो तो फिर आपके इस अहिंसा सिद्धांत और उपयोगितावाद में जो अधिकांश के अधिक सुख के लिए प्राण लेते

हुए नहीं हिचकता और जो अहिंसा का दमन नहीं भरता, अंतर ही क्या रह जाता है। पहले तो बाहरी रूप में दोनों के एक जैसे होने का हम देख सकते हैं, फिर भी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार उनके गूढ़ अर्थों में अंतर होगा। जैसे पश्चिम में अहिंसा मनुष्य तक ही और वह भी यथासंभव ही समाप्त हो जाती है, वहां मनुष्य जाति के लिए माने गए लाभ के लिए जिंदा पशुओं को चीरने फाड़ने में या उपयोगितावाद के उसी सिद्धांत के नाम पर युद्ध के सामान इकट्ठे करने में कोई हिचक नहीं होती। दूसरी ओर अहिंसावादी एकाध बार उपयोगितावादी के साथ विनाश के किसी कर्म में हाथ बटा ले सकता है, किंतु जीवित प्राणियों को चीरने फाड़ने में या युद्ध की अनंत तैयारियों में सहायता देने के बदले वह मर जाना ही अधिक पसंद करेगा। बात तो यह है कि अहिंसावादी उपयोगितावाद का समर्थन नहीं करता, वह तो सर्वभूत हिताय यानी सबके अधिकतम लाभ के लिए ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति में मर जाएगा। इस प्रकार ये मरना इसलिए भी चाहेगा कि दूसरे जी सकें। मरकर वह दूसरों की सेवा के साथ अपना कल्याण भी करेगा, सबके अधिकतम सुख में अधिकांश का अधिकतम सुख भी आ जाता है। और इसलिए अहिंसावादी और उपयोगितावादी कई बार एक ही रास्ते पर मिलेंगे, किंतु अंत में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे। किसी किसी दशा में एक दूसरे का विरोध भी करना पड़ेगा। सच कहें तो उपयोगितावादी कभी अपनी बलि नहीं दे सकता, किंतु अहिंसावादी तो हमेशा मिट जाने को तैयार रहेगा। सर्वभूत हितवादी को कुत्ते को मारेगा तो अपनी लाचारी के कारण मारेगा, या तो फिर एक आध बार खुद कुत्ते को कष्ट से बचाने के लिए। यह निश्चय करना होगा कि कुत्ते का लाभ किस बात में है, बहुत ही खतरनाक है, और इसके लिए ऐसा करने वाला भयानक भूलें कर सकता है, किंतु यह आपत्ति काम करने की मूल प्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। सर्वभूत हितवादी हिंसा के क्षेत्र को सदा कम से कम अपनाएगा। उपयोगितावादी के लिए हिंसा के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं। अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार विचार करने पर यूरोपीय महायुद्ध सरासर अनुचित मालूम होता है। उपयोगितावाद के अनुसार प्रत्येक पक्ष ने उपयोगिता के अपने विचार के अनुसार अपना पक्ष न्याय सिद्ध कर दिया है। उपयोगितावाद के सहारे जलियांवाला बाग कांड को भी उसने करने वालों ने न्याय सिद्ध कर दिखाया। ठीक इसी तर्क से अराजक भी अपनी हत्याओं का समर्थन करते हैं, परंतु सर्वभूत हितवादी के सिद्धांत की कसौटी पर इनमें से किसी भी काम को समुचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। और बापू की एक बात अब स्वतंत्रता के मूल्य पर। एक बार बापू जी को रिचर्ड बी ग्रेक गो ने एक पत्र लिखा, उसमें दिसंबर 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में रत सेनापति वॉशिंगटन के सैनिकों के नाम लिखे गए टॉमस पेन के संदेश के कुछ अंश भेजे। वो थे, यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि शांति के सिपाहियों और युद्ध के सैनिकों दोनों से एक ही गुण की कहाँ तक आशा की जाती है। टॉमस पेन का ये संदेश अहमदाबाद कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार 1921 में संगठित स्वयंसेवकों को भी, जिन्होंने विचार, शब्द और कार्य में सर्वदा शांत रहने का वचन दिया था, करीब करीब अक्षर सह सुनाया जा सकता था और मौजूद भी होता है। अगर स्वतंत्रता कोई मूल्यवान वस्तु है तो चाहे तुम शारीरिक शक्ति से उसे जीतो, चाहे आत्मिक बल से यानी स्वयं कष्ट सहकर, किंतु मूल्य तो उसका जबरदस्त ही चुकाना होगा। विकट परिस्थितियों में अहिंसावादी को भी साहस और वीरता अगर अधिक नहीं हो तो कम से कम उतनी आवश्यकता तो जरूरी है जितनी कि तलवार पकड़ने वाले को। स्वराज्य चाहे हम हिंसा से लें या अहिंसा से, स्वराज्य लेने के लिए हमें सुख और चैन को तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। उसमें विलास की तो कोई बात ही नहीं। प्रताप ने जिसे स्वतंत्रता माना उसके लिए वह कंगाल बन गया। प्रहलाद ने जिसे स्वाधीनता समझा उसके लिए उसने अपना शरीर नष्ट करने के लिए सौंप दिया।

मगर हम में अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वराज सेंट मैट ले लेना चाहते हैं। टॉमस पेन कहता है कि यह तो एक असंभव सी बात है, यानी कि टॉमस पेन का संदर्भ बापू ने स्वतंत्रता के मूल्य में संदर्भित किया था।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आज आपने चर्चा रही अहिंसावादी पर, प्रस्तुति थी सत्यव्रत सिंह की। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में दान बिहारी ब्रजवासी। आइए सुनते हैं इनसे भजन।

अभी आपने सुना मीराबाई की इस रचना को दान बिहारी ब्रजवासी के स्वर में, और आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में अगली रचना दान बिहारी ब्रजवासी के स्वर में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं दान बिहारी ब्रजवासी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में दान बिहारी ब्रजवासी से ये भजन। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है।

0: जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओ, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओ, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओ, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा।
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
1: जी
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की। सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी,
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी,
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी,
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: सकते। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।

0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।
2: बृष्टि पड़े टापुर टुपुर आए दिए सोनार नूपुर।
1: शिशु भोलानाथ आदि

0: काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की

0: और रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है।

0: जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये नगमा फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, आवाज़ें इस गीत में श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, बोल इरशाद कामिल के, संगीत विशाल शेखर का।

अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में, गीत इरशाद कामिल का था और संगीत विशाल शेखर का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पुकार से, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत AR रहमान का, और आवाज दे रहे हैं गीत को अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम।

ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, और सुनिए गाने को। इस गीत को लिया फिल्म संगीत में, ये गीत सुनते हैं फिल्म पुकार से।

अभी आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत बद ए आर रहमान द्वारा किया गया। फिल्म पुकार के इस गीत को आवाज़ दे रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पोडवाल। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का

0: ऊपर बोलने को कहा।
1: और ये सुनिए फिल्म वीरजारा में ये गीत लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ के स्वर में, गीत जावेद अख्तर का, संगीत मदन मोहन का।

अभी आपने सुना फिल्म वीर ज़ारा से ये गीत। गीत जावेद अख्तर का था और संगीत मदन मोहन का। आवाज़ इस गीत में रूप कुमार राठौड़ और लता मंगेशकर की थी। और आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह को फिल्म यंगिस्तान में।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म यंगिस्तान में। गीत कौशल मुनीर का था और संगीत जीत गांगुली का। और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हिना से।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडिकर और साथियों को फिल्म हिना में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: संजय जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी ग्राम नगरा विजयी पोस्ट ऑफिस राया जिला भत्ता से आपसे बात कर रहा हूँ जी। सर
0: आपका स्वागत है नेत्रपाल जी कार्यक्रम में।
1: आप और आपकी टीम सर कैसी है?
0: बहुत अच्छे हैं सब लोग। आपका स्वास्थ्य ठीक है?
1: ठीक है सर। अब क्या है सर, रिटायर हूँ कृषि विभाग से, तो
0: जी
1: हो गई 17 साल चल रहा हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ बने रहिए, हमारी यही इच्छा है।
1: रोज करता हूँ व्यायाम और योगा।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है सर। आज फरमाइश बताइए।

0: मैं सीआईडी लेके पहले पहले प्यार भर के आंखों के मार जादू डंगरी से आया।
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं सर।
0: सर राधे राधे सर।
1: राधे राधे, धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार।
1: जी उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ,
0: कहाँ से बोल रहे हैं उदयलाल जी?
1: जिलों के शहर उदयपुर से। जी
0: जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे
1: सर, धन्यवाद।
0: हैं आपके परिवार में और आप?
1: हम मस्त है सर। कल हमारा जन्मदिन था
0: वाह वाह,
1: तो और मस्त हो गए सर।
0: बहुत बहुत
1: जी
0: शुभकामनाएं आपको।
1: सर, 74 एज हो गई हमारी।
0: 74?
1: हाँ जी जी
0: अरे वाह वाह, आप तो सीनियर सिटीजन है सर।
1: सर।
0: ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए, हमसे बातें करते रहिए, अच्छा लगता है।
1: बस 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आनंद से रह रहा हूँ।
0: अच्छी बात है सर। आज क्या फरमाइश रहेगी उदयलाल जी?
1: जी, गीत गाता चल मैं, उसमें जसपाल सिंह जी की आवाज है। टाइटल सॉन्ग, गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत
1: जी
0: बहुत
1: सर, जी
0: शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
1: सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: बबलू कुमार बोल रहे हैं सर, अवर से। हाँ
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: अच्छे
0: क्या हाल चाल है
1: हैं।
0: कार्यक्रम में? क्या फरमाइश है आज, बताइए।
1: गाना सुना दिए सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ
0: कभी कभी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो, नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
0: सर मैं गांव उस पार से धीरे से बोल रहा हूँ सर, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र सर।
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: और सर हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है सर?
1: बहुत अच्छे हैं सब लोग। आप बताइए, आपके घर
0: हाँ,
1: परिवार
0: अभी
1: में
0: सब
1: सब अच्छे हैं?
0: अच्छे हैं सर, प्यारी जी की कृपा है। अच्छा
1: चलिए, आपका काम अच्छा चल रहा है,
0: चल रहा है सर आपकी कृपा से। हमको
1: बहुत अच्छी बात है। आज क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
0: कुली पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
1: सुनवाते हैं वीरेंद्र जी, आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार नमस्कार सर,
0: नमस्कार,
1: मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से। धन्यवाद
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: कैसे हैं आप सर?
1: हम अच्छे और आप लोग सभी अच्छे हो गए, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से।
0: हाँ, यहाँ भी सब कुछ अच्छा है सर।
1: सर आज गाना सुनना है चेहरा पिंका, पंख
0: जी
1: गोती को उड़ा के, बालमा।
0: अच्छा, रसिया ओ बालमा,
1: सर
0: आपकी फरमाइश का गाना सुनवाते हैं धीरज जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम पेश किया संजय सारस्वत ने।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन।

अनूप जलोड़ा के स्वर में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना, और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की गई ये रचना।

0: अभी तक आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बात और SMS।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपके संदेश लगातार हमें मिल गए हैं और हम 11:45 के बाद आए हुए संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पढ़ते हैं आपके संदेश। ये संदेश मिला है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। पटेल नगर मलौट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। ये संदेश आया है गांव खोकरा वाली से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बरासा का। हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं, ये हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव वोदवड़े, अनीता और रमेश राव गाठोड़े। और अगला संदेश भेजा है भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, वैष्णवी, उषा और युवराज ने। ये श्रोता जुड़े हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार।

कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्कीवाली और फलना झा। ये संदेश हमें मिला है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव का, कलाना राजस्थान से, गांव नथाना पंजाब से हमारे श्रोता जुड़े हैं, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और ये संदेश है मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही मलिक का, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय कुमार। ये श्रोता हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अहराम और मोहम्मद आलम हाशमी। हमें ये संदेश लिखा गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, राहुल खुराना, रचिता केशुरिधान खुराना और इनके संगी साथियों ने। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉ दबीरुल हसन, बेगम शबनम, नजमा और सरिता गौतम। ये संदेश आया है तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, बेबी आयुषी और विवेक श्रीवास का। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से हैं नासिर शेख, नाजिया नसिर, साजिद और शाहिद। और ये संदेश लिखा है विजय महुबिया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना और इनके परिवारी जन ने, शीतला चौक खंडवा से। सौंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी और इनके सभी परिवारी जन। ये संदेश आया है मेन बाजार कुंडलवाड़ी से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप का। देवशंकर तामुरिया, अजय देव और मास्टर अल कबीर जुड़े हैं बालोद छत्तीसगढ़ से। महादेव पारा से मीरा सिमरन और माया राजवाड़े। और ये संदेश करणवीर हाउस कुछ भुच्चो कैंचिया बठिंडा से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत, करणदीप, दपिंदर और इनके परिजन। जलालाबाद वेस्ट से हमसे जुड़ गए हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित्ता हुजा। श्रोताओ, आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा और रंक फिल्म से ये गीत।

और अब हमारे पास ये संदेश आए हैं। ये श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही और मेहराज जहां। और ये श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल, करण, कपिल और कुणाल मेहरा, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट जिला बिजनौर से संदेश लिखा। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और इनके परिजन ने। हमारे ये श्रोता हैं हैदराबाद तेलंगाना से, दोरनाला बालाजी, रेणुका, बद्री, हरणी, लोकेश और साई कृपा। अगला संदेश सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से लिखा रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी ने। ये श्रोता हैं गांधी रोड गंज डुंडवारा से, मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, फातिमा गाजी, मुन्ने सलमानी और इनके मित्रगण। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक। ये श्रोता जुड़े हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से, सुभाष, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। अगला संदेश है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन का। काशी निवास नागपुर से हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री का संदेश मिला। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी।

बेबी प्रियांशी और इनके परिवारी जन। ये श्रोता हैं फारसिपगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार, विमल और इनके सभी मित्र। रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष। गांव जाखोद से शंभू दयाल, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल योगेश और इनके मित्रगण। हमें ये संदेश मिल रहा है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन का। बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांग, चंद्रकला और देवीदास ने हमें संदेश लिखा है नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से। और ये श्रोता हैं कोयते बस्ती पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका, साइशा, सोनवने और मित्रगण। डोंडी लोहारा रायगढ़ से हैं उमाराज, कुलदीप, जगदीश और प्रभा रानी। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमें संदेश लिख रहे हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। पाकुड़ झारखंड के हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद। खैलबाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानकचंद मल्होत्रा और इनके अन्य साथी। नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। चकला बाजार समाना शहर से हैं पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक और इनके संगी साथी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। और ये संदेश हमें लिखा है नाहर मंटोला, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबर परवाना, मोहम्मद साजिद अली और मोहम्मद जाहिद और शाहिद अली ने। बटिंडा रोड मंडी डब्बवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया और इनके सभी परिवारी जन। बटिंडा रोड मंडी से हैं ये श्रोता। और अगला संदेश लिखा है जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बबलू और तरुण यादव ने। और अगला संदेश पढ़ते हैं जो मिला है सुधा शर्मा, काजल, मीरा और अनामिका शर्मा का बिहार से। श्रोताओ, आप सबकी फरमाइश का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के हैं, फिल्म लावारिस से।

और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। ये श्रोता हैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, शारदा प्रसाद प्रजापति, भजन लाल, राजू लवानिया, यादराम, वीरेंद्र कुमार और नेत्रपाल जी। ये अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। और ये हमारे श्रोता हैं छपरा दलदली बाजार से हैं संजय कुमार, संजीत कुमार, सर्वजीत और सुधांशु कुमार गुप्ता। और हमसे जुड़े हैं ये श्रोता छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। और ये संदेश हमें लिखा है नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह ने। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और ये संदेश है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल का। कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र ओबराय। और ये हमारे श्रोता हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया।

सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री। ये संदेश हमें लिखा है तेलंगाना से कस्तूरी रामुडू उमा देवी और इनके परिजन ने। ग्राम शिरडे जिला सांगली से हैं हनुमंत शिंदे और संगीता शिंदे। लारपुर मारो छत्तीसगढ़ से हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी और निशांत ध्रुव। और ये श्रोता हमसे जुड़े हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक, नीना जी और स्वप्निल। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ये अगला संदेश लिखा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत, कमल सहानी ने पिंगावाला चौक जालंधर से। और ये संदेश पढ़ते हैं जो मिला है जिला करंगल से मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया। मेरठ कैंट से हमसे जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये संदेश है गणेशपुर गंज डंडवारा से एम फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा और इनके परिजन का। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश, संघई और इनका पूरा संघई परिवार। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं ये गाना फिल्म हवस का। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, इस बीच हमारे पास और भी संदेश मिले हैं। वरवट वकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे, और ये श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराऊ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और इनके पारिवारिक जन।

ये था हवस फिल्म से गीत और स्वर मोहम्मद रफ़ी का था। और हमारे पास संदेश तो बहुत हैं, मगर समय के अनुसार ये संदेश हमें और प्राप्त हुए। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव और साइना शर्मा। और हमारे ये श्रोता हैं विनोद पुरी, वीपी पुरी, अशोक, सुशील, कैलाश, नीलम, रामापुरी, ये सभी श्रोता हैं फतेहगढ़ लुधियाना के। हमारे श्रोता कोटवा नारायणपुर से, बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। और ये श्रोता हमसे जुड़े हैं विश्वास चौधरी, संजय चौधरी, महिमा राया मथुरा से, ग्राम नागर कोहरा से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत और इनके परिजन। हमारे ये श्रोता जुड़े हैं बन बघेरा जिला राजनांदगांव से, योगेश सारवा, आशा, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा। और ये संदेश आया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, मोहम्मद रफीक पंवार, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकिब पंवार और इनके सभी मित्रगण। और ये श्रोता हैं गांधी बाग अकोला से, रमेश कटनकर, वैशाली और बेबी कार्तिकी। श्रोताओं, संदेश तो अभी और भी हैं, मगर समय हो चला है, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल आपकी फरमाइश के गीतों के साथ और आपके संदेशों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक

0: मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीरा दीक्षित के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और आइए अब सुनते हैं मीरा दीक्षित के स्वर में ये लोक रचना।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मीरा दीक्षित के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया ये लोकगीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मीरा दीक्षित के स्वर में ये लोकगीत तगड़ी सोने की।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: लीजिए प्रस्तुत हैं कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।

आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामचतुर मलिक का ध्रुपद गायन। और रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे नौटंकी अमर सिंह राठौर, प्रस्तुति TN शर्मा की होगी।

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रेखाचित्र नीतू मौसी। ये रेखाचित्र प्रस्तुत करेंगे मनमोहन गुप्ता। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान। एक बजकर 15 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस और वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सीएम मवार जानकारी प्रस्तुत करेंगे रेड क्रॉस दिवस के बारे में। एक बजकर 1:45 पर फिल्म संगीत होगा। 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। आज की बात महाराणा प्रताप जयंती और विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस के बारे में बताएंगी श्वेता सिंह धनगर। संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में

गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा होगी और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह वार्ता प्रस्तुत करेंगे, बकरियों की नस्लें उपयोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार विषय पर। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:31 से 8:00 के मध्य आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुना जा सकता है 8:30 पर। और रात्रि 9:15 से हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नवरंग।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आपने सुनी संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी, वनिता लोक।

कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं, दो पल की ज़िंदगी में अनगिनत आजमाइशें हैं। नमस्कार बहनों, मैं हूँ आपके साथ आज आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहनों, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। हम हर रोज कितनी ही ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं देखते हैं जिनमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब चाहे सड़क दुर्घटनाओं की ही अगर हम बात ले लें, तो रोज ऐसी जने हजारों सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें लोग अपनी जान गंवाते हुए चले जाते हैं, अपने परिवार को पीछे ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अब चाहे उनकी ये लापरवाही सही, लापरवाही से सड़क नियमों की अवहेलना सही, चाहे कुछ और, लेकिन ये जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और हर वर्ष बहनों लगभग हजारों लोग इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 8 मई, यानी कि आज से 8 मई से 14 मई तक हमारे पूरे विश्व में वैश्विक सड़क सुरक्षा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। जी हाँ बहनों, पूरे एक सप्ताह का ये कार्यक्रम रहता है, जिसको कि 8 से 14 मई तक पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि लोग सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक बने, अपनी सुरक्षा को लेकर चलें, इस वजह से ये वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत UNCE द्वारा 2005 में की गई थी और यातायात सुरक्षा कार्य समूह के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई और इसको वैश्विक स्तर पर क्रिया

0: कार्यान्वित किया। सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में बहनों जागरूकता बढ़ाने के लिए ही वैश्विक और क्षेत्रीय गतिविधियों को एक मंच प्रदान किया गया, जिसका के उद्देश्य वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की स्थापना करना था। और आपको बता दें कि जब सबसे पहले ये सप्ताह मनाया गया था तो इसका विषय था युवा सड़क सुरक्षा, यानी कि हम देखते हैं कि युवाओं में ही बहुत ज़्यादा लापरवाही बेपरवाही से ड्राइविंग का जो चलाना ड्राइविंग करना उनका जो रहता है, जिसमें वो अपनी तो क्या किसी सामने वाले की भी परवाह नहीं करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए खासकर युवाओं को सजग करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले जो सप्ताह मनाया गया था वो इन्हीं को लेकर मनाया गया था। हालांकि बहनों सड़क सुरक्षा सप्ताह सभी वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर जोर देता है। और आपको बता दें कि हर वर्ष अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है और इस वर्ष की यानी कि 2026 की जो इस सप्ताह की थीम है बहनों वो है सीख से सुरक्षा, तकनीकी से परिवर्तन। यानी कि हम देख रहे हैं कि हर रोज टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका उद्देश्य ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीकी समाधानों का प्रयोग करके सभी लोगों को जागरूक करना है, अपने प्रति सुरक्षित करना है, जिससे कि उनके व्यवहारों में बदलाव आ सके, सड़क नियमों का वो पालन कर सकें और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। इसके लिए बहनों जैसे वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना, रात में अगर रोशनी कम है तो उसकी दृश्यता को बढ़ाना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम किए गए हैं जिससे कि एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं कम हों। कहने का अर्थ यही है बहनों कि जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। चाहे पैदल चलें या ड्राइविंग करें, सुरक्षा नियमों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जीवन रहेगा तो जहान रहेगा।
1: ए भाई दर देख के

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: हजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 8 मई है, और आपको बता दें कि आज 8 मई को पूरे विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जा रहा है। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस बहनों रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक जॉन हेनरी ड्यूएंट के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। हेनरी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 8 मई 1928 को जिनेवा में हुआ था, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बहनों लोगों में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता की भावना को विकसित करना है, जिससे कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम से और सद्भावना से रहें। इसके अपने कुछ नियम हैं, जैसे कि हर संस्था के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही रेड क्रॉस के भी अपने नियम हैं, जैसे कि मानवता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, एकता आदि। इसके संस्थापक हेनरी जो थे बहनों, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए जिनसे कि लोगों को बहुत फायदा हुआ। और हेनरी ड्यूएंट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये रेड क्रॉस संस्था का जो चिन्ह है बहनों, क्योंकि हर संस्था का अपना कोई निशान होता है, कोई चिन्ह होता है, ऐसे ही इस संस्था का भी है, और वो है सफेद रंग की पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस। विश्व रेड क्रॉस दिवस बहनों हर वर्ष अलग अलग थीम पर मनाया जाता है, और जो 2026 की इसकी यानी कि इस वर्ष की जो थीम है वो है मानवता को जीवित रखना। यानी कि किसी भी आपदा में, किसी भी संघर्ष के समय एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ बनना ही रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहानुभूति बनी रहे, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आइए आज इसी से संबंधित एक भेंट वार्ता भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिससे कि विश्व रेड क्रॉस के बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। तो ये जानकारी दे रहे हैं आज डॉक्टर CM पवार, और इनसे भेंट कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह से काम करती है, कैसे लोगों की मदद करती है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर CM पवार जी, जो कि मथुरा के पूर्व डिप्टी CMO और पूर्व में आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, और इसी के साथ आप रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट एवं ऑफिशियल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और वर्तमान में जनपद मथुरा में जिला स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे क्रम पण में हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये दिवस हम क्यों मनाते हैं और कैसे रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई?
2: ऐसा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे प्रथम इसकी स्थापना 1863 में हुई, और सर हेनरी ड्यूएंट साहब ने इसकी स्थापना की। सर हेनरी ड्यूएंट साहब का उस दिन जन्मदिन भी था, इसलिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी का जो दिवस है वो 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे देश में इसकी स्थापना 1920 में हुई, और चूंकि 1920 में इसकी स्थापना के बाद इसका स्ट्रक्चर बना, और ये इसकी स्थापना में हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं वो इसकी अध्यक्ष हैं, और स्टेट लेवल पे इसके अध्यक्ष गवर्नर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे जिलाधिकारी महोदय होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है

0: वो हमारे वो नामित किए जाते हैं। वर्तमान समय में हमारे मथुरा में उपाध्यक्ष के पद पर मुख्य विकास अधिकारी जी तैनात है।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी का क्या उद्देश्य रहता है और ये कैसे काम करती है?
0: सर, हेनरी डुनांट साहब का जन्म जो है 8 मई को हुआ था, और मैं आपको बताऊं कि सर हेनरी डुनांट साहब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत बड़े व्यापारी थे। तो उसमें महायुद्ध हो गया था, तो ये अपने व्यापार के संबंध में निकले थे। तो उसमें जब महायुद्ध हो गया तो उनका दिल बड़ा पसीज गया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो इतने हताहत हैं। तो उनकी सेवा के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पीठ पे लोगों को वो रेड क्रॉस का चिन्ह लगाकर उनके हताहतों की सेवा करनी शुरू की, और वहां पर तभी ये रेड क्रॉस की स्थापना हो गई। अब चूंकि उस दिन उनका जन्मदिन भी था, इसलिए प्रत्येक वर्ष ये 8 मई को मनाया जाता है। तो सबसे प्रथम इसका उद्देश्य है हताहतों की सेवा करना, सबसे प्रथम हताहतों की सेवा करना है। और उसके साथ साथ ये कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबकी सेवा ये इनडिस्क्रिमिनेट से हिसाब से करते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सेवा ही परमो धर्म के नाम से सेवा की जाती है। और उसमें इसके साथ साथ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हमारे लोग बाग तैयार हो जाएं फर्स्ट एड देने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा का ये भी काम करते हैं। इसके साथ ब्लड डोनेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई हताहत हो जाता है या कोई ऐसा बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो जाता है, अगर ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड डोनेशन का कार्य भी ये कराते हैं। और इसके साथ साथ गरीब तबके का जो व्यक्ति है उनमें हेल्थ मेले भी लगाना, ब्लड डोनेशन का काम करना, डिजास्टर राउंड कराना, ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, इम्पार्शियलिटी, न्यूरोपैथी, वॉलंटरी सर्विसेज, ये सारी सेवाएं जो है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिनकी ये सेवा ना करे, सब तरह की सेवा हमारे फर्स्ट एड में कराई जाती है।
1: तो आप अपने अनुभव में कुछ ऐसे उदाहरण या कुछ ऐसे पल साझा करना चाहेंगे जहां रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपनी अहम भूमिका निभाई हो?
0: एक बार ऐसा हुआ कि एक मेला लग रहा था हमारे चौमा में, और उसमें हमारे जो परिवार कल्याण के मंत्री चौधरी सदा सिंह जी थे, तो उसी समय मालूम हुआ कि एक व्यक्ति बेहोश हो गया है वहां पे। तो हम लोग उनको तुरंत ले जाके अस्पताल में उसकी सेवा कराई, ब्लड डोनेट करवाया और को ब्लड को उन्होंने चढ़ाया और उसकी जान बच गई। तो ये उसमें ये फर्स्ट एड का बहुत बड़ा काम, क्योंकि मैं उसमें डिप्टी सीएमओ था और रेड क्रॉस का ही मैं पदाधिकारी था, वो तुरंत हमने कार्य किया और उसकी जान बच गई।
1: आपने बताया कि जब युद्ध होते हैं वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए काम करती है, और प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं कभी कभी, तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण बताना चाहेंगे कि जहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने काम
0: किया? हमारे जनपद में एक रेल दुर्घटना हो गई थी, उसमें हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ओवन खन्ना साहब थे। तो रेल दुर्घटना में जितने लोग हताहत हो गए थे, हम तुरंत रेड क्रॉस की अपनी टीम बनाकर वहां पे स्टेशन पे ले जाकर उनको हताहतों को लाकर हमने अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी सेवाएं की। ये भी एक रेड क्रॉस का महत्वपूर्ण कार्य हमने उसमें बतौर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी और रेड क्रॉस के जुड़े होने के कारण हमने किया। तो ये इस प्रकार जो आपदा होती है या इस तरह के कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसमें जो है हम लोग पहले से ये सारी व्यवस्था बना के ट्रेनिंग करा के लोगों को हम तैयार करते हैं कि अगर इस तरह की आपदा, अगर एक्सीडेंट हो, कहीं कोई इस तरह का कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ हम जाके फर्स्ट एड की तुरंत व्यवस्था बना देते हैं। और ये सभी कामों में जो है रेड क्रॉस सर्वोपरि रहती है और इसमें हम कार्य करते रहते हैं।
1: इसमें रेड क्रॉस के जो सदस्य रहते हैं, जो लोग रेड क्रॉस से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको क्या क्या चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह की आपदा आ जाए तो वो लोगों की मदद कर सकें?
0: सबसे महत्वपूर्ण तो उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, और आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो CPR की होती है। CPR मतलब किसी का हृदय की गति एकदम रुक जाए, तो हम उसको CPR की ट्रेनिंग देके किस तरह से उसकी जान बचाते हैं, ये आपको कभी हम आ पाए तो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। CPR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी व्यक्ति को जो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो गया, उसके हृदय की गति रुक गई, उसको CPR देके हम वापस को रिबोटाइज कर देते हैं।
1: जनपद में वर्तमान में कितने लोग रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं?
0: इसमें वर्तमान में हमारे पास लगभग 350-400 व्यक्ति ऐसे हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वो लाइफ मेंबर्स बने हुए हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हमको हम बुलाकर जो है हम रेड क्रॉस की सेवाएं प्रदान करते हैं।
1: कोई आपदा आ जाती है या आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन

0: की ओर से क्या रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए कुछ दिशा निर्देश आते हैं, उनको बुलाया जाता है?
1: इस तरह की कोई आपदा हो जाती है तो हमारे जिलाधिकारी महोदय, जो कि हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, वो तुरंत मीटिंग बुलाकर सभी हमारे पदाधिकारियों और लाइफ मेंबर्स को बुलाकर आपदा के कार्य में लगाने के निर्देश जारी करते हैं और हम ये सारा कार्य जो है उसमें तुरंत रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा करते हैं। रेड क्रॉस का जो इसमें जो हमें थीम मिला है वो है कि हम अपने जो हताहत लोगों को तुरंत उसको ठीक करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें और ब्लड डोनेशन वगैरह कैंप कराकर जो ब्लड की जरूरत पड़े उसमें हम उनकी पूर्ति करें, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है।
0: क्या ग्रामीण स्तर पर भी कुछ काम रहता है रेड क्रॉस का?
1: हाँ, ये रेड क्रॉस सोसाइटी को हम अब ग्रामीण स्तर पर भी ले जाने का कार्य कर रहे हैं। शहरों में तो ये हमारी सोसाइटियाँ बनी हुई है, पदाधिकारी भी है, हम अब उसको ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल वहाँ भी जो है इस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
0: और सरकार के द्वारा कुछ इसमें मदद की जाती है, कुछ आर्थिक सरकार का सहयोग रहता है?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टेट लेवल पे जो हमारे अध्यक्ष हैं वो गवर्नर महोदय होते हैं और जो हमारे राज्य स्तर पे रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हमारा जो कार्यालय है वहाँ से भी हमें सहायता मिलती है और उनको जब कभी हमें जरूरत पड़ती है उनसे हम डिमांड करते हैं, वो हमें सहायता दे देते हैं। दिल्ली में हमारा एक जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो नेशनल लेवल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे स्टोर बना हुआ है, हमें यदा कदा जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो कोई भी व्यक्ति अगर रेड क्रॉस से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है?
1: बिल्कुल, सभी व्यक्ति कोई भी हो, किसी क्लास का हो, किसी व्यक्ति हो, हम रेड क्रॉस से जुड़ सकते हैं। 1100 रुपया उसकी फीस है लाइफ मेंबर की, 1100 रुपये की रसीद काट के उसको हम मेंबर बना देते हैं और हमारी वो सेवा में लग सकता है।
0: रेड क्रॉस के मेंबर जब अच्छा काम करते हैं तो सम्मानित किया जाता है, कुछ प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया जाता है?
1: हाँ जी हाँ, ये स्टेट लेवल पे हमारे रेड क्रॉस का डे मनाया जाता है लखनऊ में और वहाँ जो अच्छे कार्य करने वाले जो हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो भी इसमें लाइफ मेंबर जुड़े हुए हैं उनको पारितोषिक वितरण हमेशा किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा।
0: जो सर्टिफिकेट आप देते हैं तो कहीं उसका लाभ भी मिलता है क्या?
1: ये अपील हम लोगों ने बहुत पहले भी की है और आगे भी हम करते रहे हैं कि रेड क्रॉस के जो कार्यकर्ता है या रेड क्रॉस के जो लाइफ मेंबर्स है उनको जो है कम से कम नौकरियों में जो है अवश्य उनमें उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे कि लोगों को इसमें राहत मिले।
0: रेड क्रॉस डे के अवसर पर हमारे जनपद मथुरा में कुछ कार्यक्रम रहेगा, कुछ एक्टिविटी की जाएंगी?
1: इसमें अभी हम ये अभी 8 मई का जो हमारा रेड क्रॉस डे मनाने का ऊपर से निर्देश आया है हमारे राज्य स्तर लखनऊ से, तो उसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी मेंबर्स और जो पदाधिकारी ये सब कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और इसमें रेड क्रॉस को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड इसके साथ लगी हुई है, कहते हैं कि अगर रेड क्रॉस हमारा दिमाग है तो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ब्रिगेड हमारे हाथ पैर है, ये हमारे फर्स्ट एड का काम करते हैं, हताहतों को बचाने में काम करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के अब बताते हैं कि इनका विलय कर दिया गया है रेड क्रॉस के साथ में, तो ये मिलकर हम कार्य करेंगे।
0: और क्या संदेश रहेगा सभी श्रोताओं के लिए?
1: रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए संदेश है कि रेड क्रॉस का मेंबर बनिए और यदा कदा जब कभी जरूरत पड़े तो हमारे साथ जुड़कर हताहतों की सेवा ब्लड डोनेशन कैंप आदि में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी ये भेंट वार्ता रेड क्रॉस दिवस, जिसमें जानकारी दे रहे थे इसके बारे में डॉक्टर CM मवार और इनसे भेंट कर रहे थे जितेंद्र सिंह। और आइए अब सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

बहनों, भिंडी की सब्जी सबको पसंद होती है। घर में चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े, भिंडी चाहे उनके लंच बॉक्स में रखिए, चाहे शाम के खाने में, उनको हमेशा भाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादातर छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडी को काटकर और सब्जी बना देते हैं। एक होती है बहनों बेसन वाली कुरकुरी भिंडी, जिसको आप कभी ट्राई करके देखिएगा तो आपको तो पसंद आएगी ही आएगी, साथ में आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में ना काट कर उसको लंबा चीरा लगाइए उसके बीच में, और उसको फिर तेल डालने के बाद कढ़ाई में उसमें प्याज लहसुन अगर आप खाते हैं तो उनको थोड़ा सा

टमाटर हल्का सा छोटा छोटा काट के उनको हल्का सा भूनिए, और इसके बाद उसमें भिंडी डाल दीजिए। और क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, तो 5-7 मिनट में जब भिंडी बन जाए, तो जैसे हम कढ़ी बनाने के लिए दही में थोड़ा सा बेसन और सारे बेसिक मसाले डालते हैं, ऐसे ही दही में थोड़ा सा बेसन डालिए और उसमें सभी मसाले जो हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया जो भी होते हैं, वो सब उसमें डाल के फिर भिंडी वाली कढ़ाई में डाल दीजिए। और फिर ऊपर से उसमें थोड़ा सा आमचूर डालिए, थोड़ा सा कलौंजी डालिए, और जब तक ये भिंडी अच्छे से लबाबदार रसीली ना हो जाए, उस तब तक इनको भूनते रहिए। और जब ये पक जाए, अच्छे से सब्जी बन जाए, तो फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी डालकर सर्व कीजिए। देखिए, आपके बच्चों को तो कितना भाएगी, साथ में आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ बहनों, अपने कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। आप सभी को आशुरावत का प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं, वनिता लोक।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत था फिल्म हेरा फेरी से, और अब कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर जगजीत कौर और साथियों के हैं फिल्म उमराव जान में।

अभी तक आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे और उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा

0: पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
4: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: @iirnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के

उत्तर पश्चिम विभागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: लीजिए पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

जीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थीं। कार्यक्रम का अगला गीत है सावन को आने दो फिल्म का, स्वर यसुदास का है।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत, स्वर रेशमा का है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

प्रण ये लें, सेवा का पथ अपनाएंगे, ज़रूरतमंदों की मदद कर मानवता को बचाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज यानी 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिन मानवता, सेवा, दया और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। यह दिन हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंदों की सहायता करना, मानवता और करुणा का संदेश फैलाना, आपदा और संकट के समय सेवा देना, लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन यानी 8 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रेम, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित होता है ये दिन। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ज़रूरतमंदों की मदद करने, पीड़ितों की सहायता करने और मानवता के प्रति जागरूक करना है। रेड क्रॉस संस्था युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी एवं अन्य संकटों के समय लोगों की सहायता करती है। यह संगठन बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा का कार्य करता है। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक उपचार और राहत कार्य इसके प्रमुख कार्य हैं। यदि बात करें रेड क्रॉस दिवस 2026 की थीम की, तो वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी मानवता को जीवित रखना। यह दिवस हमें सिखाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए, स्पेशली तब जब वे ज़रूरत के लिए आपको पुकार रहे हों। ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखने और समाज में प्रेम व शांति फैलाने का प्रयास करता है। यह दिन इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनाते हैं। जहां मानवता है वहीं सच्ची सेवा है। तो आइए रेड क्रॉस के आदर्शों को अपनाकर प्रेम, शांति और सेवा का संदेश फैलाएं।

0: जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हम मना रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इसी विषय पर आइए सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार हैं श्वेता सिंह धनगर।
1: दोस्तों, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत पड़े तो निसंकोच उसकी मदद करने को तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, बिना भेदभाव के मानव की सेवा करने वाली संस्था जिसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दिवस को अंग्रेजी में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कहते हैं। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लगभग 150 वर्षों से पूरे विश्व में रेड क्रॉस के स्वयं सेवक असहाय एवं पीड़ित मानवता की सहायता के लिए काम करते आ रहे हैं। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। तब से रेड क्रॉस के स्वयं सेवक विभिन्न प्रकार की आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख को बढ़ावा देने के लिए वो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले तथा पीड़ित मानवता की सेवा बिना भेदभाव के करते रहने का विचार देने वाले महान पुरुष जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर के दिन तथा उनके इन महान कार्य को देखते हुए उनके जन्मदिन के दिन अर्थात 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और पूरे विश्व के लोगों को

मानवतावादी सेवक के रूप में उनके द्वारा गठित सोसाइटी को रेड क्रॉस का नाम दिया गया। वर्तमान में विश्व के 186 से भी अधिक देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति से विचलित हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को जिनेवा में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। हेनरी की इन परिकल्पना का नाम था इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द बाउंडेड। रेड क्रॉस का परिचय। वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। रेड क्रॉस ने प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए घायल सैनिकों और नागरिकों की सहायता की थी। रेड क्रॉस की इन्हीं कार्यों की बदौलत वर्ष 1917 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1994 में रेड क्रॉस एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें पदेन अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति एवं सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बनाया गया। रेड क्रॉस की संस्था ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से घायलों का प्राथमिक उपचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इन घायलों की सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी ने की थी। पहले विश्व में अनेक देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी पर प्रतिबंध था, परंतु अब विश्व के लगभग सभी देशों में इसकी शाखाएं खुल गई हैं। संस्था के सदस्य निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का काम करते हैं, रोगियों, घायलों, सैनिकों की मदद करते हैं। भारत के गांव और शहरों से यह एम्बुलेंस दवाइयां पहुंचाने का काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के कार्यों के विस्तार का आभास कुछ उदाहरणों से हो जाएगा। प्रारंभ से ही स्वतंत्र रेड क्रॉस समिति के निर्माण तथा जेनोवा अधिवेशन के सदस्यों की स्वीकृति ने शीघ्र सफलता प्राप्त कराई। फ्रांसीसियों और जर्मन आहतों द्वारा बीमार सैनिकों की भलाई के लिए बासले में 1870 ईस्वी में एक सूचना एजेंसी का निर्माण हुआ। यह रक्तदान शिविरों का आयोजन करती है, जगह जगह ब्लड बैंकों की स्थापना की है, रक्तदान जागरूकता अभियान भी चलाती है। जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया से बचाव के तरीके लोगों को बताती है। रेड क्रॉस के उद्देश्य की बात करें तो रेड क्रॉस के उद्देश्य सभी देशों में रेड क्रॉस आंदोलन को फैलाना है तथा रेड क्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करना है। नई रेड क्रॉस समितियों के संविधान से वर्तमान समितियों को सूचित करना इसका उद्देश्य है। इसका सभी सभ्य राज्यों को जेनोवा अधिवेशन स्वीकार करने के लिए राजी करना, अधिवेशन के निर्णयों का पालन करना है, कानून बनाने के लिए सरकारों पर दबाव डालना तथा ऐसी अवहेलनाओं को रोकने के लिए सेना को आदेश देना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य युद्ध काल में बंदियों की सहायता तथा अन्य पीड़ितों की सहायता के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का निर्माण करना है, बंदी शिविर की देखरेख, युद्ध बंदियों को संतोष और आराम पहुंचाना है और सभी प्राय प्रभावों के प्रयोग से उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना भी इसका उद्देश्य है। शांति तथा युद्ध के समय में भी सरकारों, राष्ट्रों तथा उपराष्ट्रों के बीच शुभचिंतक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, यही रेड क्रॉस देखते हैं। भारत का रेड क्रॉस के संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार की आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस समय 1 करोड़ रुपया जो इस संस्था के लिए दान मिला था इसका मूलधन बना। भारत में इसकी 18 प्रांतीय संस्थाएं और 412 जिला शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। बंगाल की भुखमरी से लेकर कई प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय इसने सहायता पहुंचाई है। मानव सेवा का काम करना बहुत मुश्किल है। विश्व के अनेक देशों में अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है। वर्तमान में आतंकवाद अक्सर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इन सब के बावजूद रेड क्रॉस सोसाइटी और इसके कार्यकर्ता हर जगह दृढ़ता और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। रेड क्रॉस के उद्देश्य सभी देशों में रेड क्रॉस आंदोलन को फैलाना है तथा रेड क्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करना है। नई रेड क्रॉस समितियों के संविधान से वर्तमान समितियों को सूचित करना इसका उद्देश्य है। इसका सभी सभ्य राज्यों को जेनोवा अधिवेशन के निर्णयों का पालन करना है। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार की आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे वार्ता रेड क्रॉस डे। वार्ताकार थी श्वेता सिंह धनगर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, भारत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और नक्श अजीज की आवाज़ों में। गीत लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत विशाल शेखर का था।

जुबिन गर्ग की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म गैंगस्टर से ही। इस गीत को लिखा सईद कादरी ने, संगीत रीतम का था। और आइए चलते चलते सुनते हैं विशाल डडलानी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न होता है। ध्यान रखिए, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। आइए जरूरतमंदों की मदद करें और मानवता को मजबूत बनाएं। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्य

0: की रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने उसे संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम सुहानी व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर।

संध्या 6:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा गर्मी में पशुओं की देखभाल, साथ ही साथ सुनिएगा भेंट वार्ता, बकरियों की नस्लें, उपयोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार। जानकारी देंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। संध्या वंदन फिल्मी भजनों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा रेखा चित्र नीतू मौसी, प्रस्तुत करेंगे मनमोहन गुप्ता। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर सुनिएगा देशभक्ति परक रचनाएं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से का समय होगा रात्रि 8:30। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं नौटंकी।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा रामचरितमानस का ध्रुपद गायन।

0: आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप यादव।
1: ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनबे बारे सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, गर्मी को मौसम है, हालांकि बीते कछु दिनों से मौसम की जो करवट है वसो तापमान में बहुत गिरावट बही है, लेकिन गर्मी तो गर्मी है और गर्मी में पशुओं की देखभाल हम कैसे करें, यह विषय पे हम कर रहे हैं चर्चा। तो किसान भैया, वैसे तो आप सब जानो ही हो कि हमारे जो पेड़ पौधा हैं गांवन में, जिनको नहरों कहें घेर कहें, वहाँ जो पौधा लगे रहे, पौधान की छाँव में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहे, कमी रहे, और आप सब लोग ऐसी जगह पर ही अपने पशुओं के बांधो हो। लेकिन या बार जैसे अप्रैल के महीना में तापमान 45 से ऊपर 47 डिग्री तक पहुँचो है, विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह गर्मी के 4 दिन की जो शुरुआत है वाने ही हमारे पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बहुतायत में प्रभावित किया हो। तो निश्चित रूप से हमें जिन जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वह में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। पशुओं को हमेशा ताज़ी पानी पिलावें, जैसे कि उनके शरीर की जो गर्मी है, रखो वो पानी, बासी पानी

0: तापमान में गर्मी है तो निश्चित रूप से पानी भी गर्म हो, तो उनको शुद्ध और ताजी पानी ही पिलाना चाहिए। कम से कम 2 बार 3 बार नहलावे की जो व्यवस्था है वो जरूरी रूप से करनी चाहिए। हरे चारे की मात्रा, जो कि हरे चारे में विटामिन प्रचुर मात्रा में होए और गर्मी में, इन सब की ज़रूरत रोगन से लड़ने की क्षमता के काजे बेहद ज़रूरी होए गर्मी में, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्षरित होए और जो हमारे साल्ट हैं, नमक है कई तरह के, वो भी पसीना के रूप में पशुओं के शरीर में से निकले हैं। तो हरे चारे की व्यवस्था हमें हर हालत में अपने दुधारू पशुओं को बनानी चाहिए। दाने की हम बात करें तो दाने में जितना दानों हम दे रहे हैं, जो हमें खल, चुनी, चोकर और कई तरह के अनाजन को मिश्रण शामिल रहना चाहिए, और विशेष रूप से जो दलहन है, दलहन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहे, तो दाल चाहे मूंग की हो, मसूर की हो, उड़द की हो, जो आपको सस्ती से सस्ती मिले, वो दाल हमें अपने पशु के आहार में ज़रूरी रूप से शामिल करनी चाहिए। नमक और जो खनिज हैं उनकी पूर्ति के काजे बहुत से भैया सेंधे नमक की जो डेला हैं बड़े बड़े 5-5 किलो के, वो अपनी पशुशाला में पशु के मुंह के आगे रखें ताकि पशु को अगर चाटनो हो, ज़रूरत हो तो वाकू चाट सके। अन्यथा की दशा में खनिजन की कमी है वे पैर पशु दीवाल को, जमीन को, इन सब कुछ चाट वो शुरू कर दें, और कई बार तो अपने खुद के पेशाब को भी चाट वो शुरू कर दें। तो उनकी जो खनिजन की आवश्यकता है बाकू हमें हर हालत में पूरा रखना है, और बाकू पूरा रखवे को जो है खनिज लवण के जो डेला डालवे की हमारी आदत है वो बड़ी उपयुक्त आदत है। बाकी अलावा आजकल खनिजन की ईंट भी बनाई जाए, हमारे यहाँ वेटनरी कॉलेज है वहाँ में 5 किलो की ईंट बनाई जाए, तो जो ज़रूरी खनिज तत्व हैं उनको मिश्रण को एक सांचे में ढाल के ईंट नुमा आकृति दे दी जाए, इनको भी खरीद के आप अपनी पशुशाला में या अपनी डेयरी में रख सके हैं। दूध बढ़ावे के काजे देखो चूनो बड़ा महत्वपूर्ण है, या तो कैल्शियम की पूर्ति भी हो, तो हमारे जो पानी की हौदी है उनकी साफ सफाई हम जब भी करें तो सफ़ेदी से बाकी एक बार पोताई कर दें, तो कैल्शियम पानी के संग में उनको मिलता रहेगा और कम मात्रा में मिलता रहेगा, यानी कि जितनी जो उनकी ज़रूरत है कैल्शियम की बाकी पूर्ति भी होती रहेगी। अगर आपके पास व्यवस्था ऐसी है कि आपके बड़े जो है खेत है, कहीं स्विमिंग पूल टाइप की व्यवस्था है या गड्ढे की व्यवस्था है या ऐसे तालाब की व्यवस्था है जहाँ में पानी साफ है, तो कम से कम जो भैंस हैं, क्योंकि उनकी चमड़ी काली हो और काली जो चमड़ी है, काली चमड़ी ऊष्मा को, गर्मी को बहुत ज़्यादा सोखे है, तो घंटा दो घंटा को ऐसे साफ पानी वाले पोखर में या अपने गड्ढे में पशु को, भैंस को विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। गाय की हम बात करें तो गाय को, जर्सी गाय को अगर छोड़ दें, HF को हम छोड़ दें, तो देसी गाय को उतना ज़्यादा गर्मी के प्रभाव से जो है दिक्कत ना हो, तो उन्हें अगर दिन में एक बार भी नहलाओगे या 2 दिन में एक बार भी नहलाओगे तब भी काम चल जाए। वो गर्मी में पशु की देखभाल दाने के रूप में, चारे के रूप में, शुद्ध और ताजी ठंडे पानी के रूप में और वृक्षण की छाँव के रूप में विशेष रूप से ज़रूरी है, और साफ सफाई उनके बाड़े की रखो ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप जानो हो और निश्चित रूप से आप ध्यान रखो भी हो, तो ये सब चीज़ अगर ठीक ठाक रहेंगी तो हमारे जो पशु हैं उनको उत्पादन पे प्रभाव गर्मी की वजह से पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। ये चर्चा रही गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पे। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता रेडियो पाठशाला क्रम में, बकरियों की नस्लें, उपयोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और इनसे भेंट करी है OP सिंह ने। सुने ये भेंट वार्ता।
1: CIRG बकरी पालन रेडियो पाठशाला में किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बकरी पालन की उन्नत विधि पर CIRG के वैज्ञानिकों के साथ एक रेडियो पाठशाला का आयोजन किया है, जिसमें वैज्ञानिक बंधु उन्नत प्रौद्योगिकी है या उन्नत टेक्नोलॉजी है बकरी पालन की, इसको विभिन्न पाठों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है बकरियों की नस्लें, उनकी उपयोगिता और ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि इस पाठ के तुरंत बाद प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आप आकर्षक इनाम के हकदार हो जाते हैं। आपको प्रश्न का उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8439206238 इस पर देना है। मैं एक बार नंबर पुनः दोहरा देता हूँ, 84 39 20 62।

0: 38। इसके अलावा भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं kshipathshala@gmail.com। किसान भाइयों, आज बकरियों की नस्लें, उनकी उपयोगिता और ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी। प्रधान वैज्ञानिक हैं आप और एक लंबा अनुभव है इनको बकरी पालन के संबंध में शोध करने का, और इन्होंने काफी दिनों से इस विषय पर कार्य किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: तो जैसे नस्लों की बात अगर हम करते हैं डॉक्टर साहब, तो हमारे इस ब्रज क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी उन्नत नस्लें हैं बकरी की जो यहाँ के पशुपालक भाई जिनका प्रयोग कर सकते हैं?
1: हमारा ब्रज क्षेत्र बड़ा सौभाग्यशाली है कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया की एक महत्वपूर्ण नस्ल जिसे बर्बरी के नाम से हम जानते हैं, वो हमारे ब्रज क्षेत्र से ही ओरिजिनेटेड है, यानी वही इसका मूल आवास है, और ये मांस उत्पादन और दूध दोनों में सर्वोत्तम है, यानी दुकाजू नस्ल है। मझोले आकार की होती है और देखने में इसके जो कान हैं वो हिरण जैसे होते हैं, और इसकी जो विशेष पहचान है तो इसके जो कान हैं वो इरेक्ट यानी हिरण जैसे छोटे हैं, और सफ़ेद रंग पर बादामी रंग के धब्बे होंगे, कभी कभी बादामी रंग पर सफ़ेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। और इस नस्ल को बहुत ज़्यादा किसान आजकल खरीद रहे हैं या इस नस्ल के साथ ग्रामीण स्तर पर पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये कम उम्र में ही गाभिन हो जाती है, एक बार में औसतन ज़्यादा बच्चे देती है, यानी कि 100 में से लगभग 80 से 90 बकरियां 2 बच्चे देती हैं, और अच्छी खान पान रखने पर एक दिन में इसका दूध उत्पादन है वो भी लगभग 1 लीटर होता है। हालांकि ब्रज क्षेत्र में कुछ किसान सिरोही, जमुनापारी और झकराना नस्लों के साथ भी बकरी पालन कर रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये बताया बर्बरी किस्म, हमारे जो बकरी पालक भाई हैं भली भांति परिचित हैं इससे। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है जिसमें हमारा पहाड़ी इलाका भी आता है और बुंदेलखंडी इलाका, विशेष तौर पे इन क्षेत्रों के लिए और कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिनका प्रयोग किसान भाई या पशुपालक भाई कर सकते हैं? और यहाँ मैं ये बताना ठीक समझता हूँ किसान भाइयों, जैसा आप समझते हैं कि अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं उसके लिए बीज उत्तम किस्म का और अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, इसी तरह अगर आप बकरी पालन का धंधा कर रहे हैं या उसका व्यवसाय व्यवसायिक तौर पे कर रहे हैं तो उसमें आपको श्रेष्ठ पशु ही चुनने चाहिए।
1: जो बकरियों की नस्ल का चुनाव प्रमुख रूप से जो जलवायु, जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन पर निर्भर करता है, और हमारे पूर्वजों ने विभिन्न जलवायुओं के लिए अलग अलग नस्लों को विकसित किया, और जब वो अपने जलवायु क्षेत्र से काफ़ी हट जाती हैं तो उनकी उत्पादकता में कमी आती है, मृत्यु दर में बढ़वार होती है। अब उत्तर प्रदेश के लिए जो पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, इसके लिए जो सबसे उपयोगी नस्ल है वो बर्बरी है
0: जी।
1: साथ ही साथ जहाँ पर के जंगल यानी के पेड़ों पर चढ़ के खाने की सुविधा है वहाँ के लिए एक और अच्छी नस्ल है, उसे जमुनापारी कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की ही नस्लें हैं दोनों। साथ ही साथ जो हमारा बरेली रोहिलखंड क्षेत्र है वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जो रोहिलखंडी नस्ल है जिसको कि अभी रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो बुंदेलखंड है उसके लिए जो बुंदेलखंडी नस्ल है वो नस्ल काफ़ी उपयोगी है, और जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो स्टॉल फीडिंग सिस्टम के लिए जो ब्लैक बंगाल और बर्बरी दोनों बहुत उपयोगी नस्लें हैं। मैं यहाँ एक बात बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि नस्ल के चुनाव में जलवायु के साथ साथ उनके प्रबंधन का क्या तरीका है वो भी बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बकरियों को चरने के लिए, चरने में जैसे बुश मटेरियल जैसे कि बेर हो गए जिसपे बकरियां चढ़ के खा सकती हैं, अगर इस तरह का उपलब्ध है तो वहां पर जमुनापारी भी उपयोगी नस्ल है
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने 3-4 नस्लों का जिक्र किया, जमुनापारी का, आपने बुंदेलखंडी, रोहिलखंडी और अभी आपने बर्बरी के बारे में या ब्लैक बंगाल, थोड़ी सी विशेषताओं पे इन पे चर्चा कर लेते हैं जिससे किसान भाइयों को और समझ में आए।
1: जी हाँ जी हाँ। जो सर्वप्रथम हम बर्बरी नस्ल को ले

0: हैं। तो ये क्या है कि जैसा कि मैंने इसकी आकृति के बारे में बताया था कि ये मध्यम से थोड़ी छोटे आकार की होती है, और इसकी जो विशेष उपयोगिता है ये है कि ये कम उम्र में ही वयस्क हो जाती है। इसकी वयस्क होने की उम्र लगभग 8-9 माह है। साथ ही साथ इसमें 2 या 3 बच्चे देने की दर, वो लगभग 80% बकरियां 2 या 3 बच्चे देती हैं। साथ ही इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो भी 150 दिनों में 130 से 140 लीटर है, यानी कि ये दूध देने में भी बहुत अच्छी है। और इसकी जो विशेष खूबी है जिसके चलते आजकल ये व्यावसायिक बकरी पालन में विशेष स्थान रख रही है कि इसको घर पर ही रखकर, या जो इंटेंसिव फीडिंग, स्टॉल फीडिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें के उद्यमी लोग इसको काफी उन लोगों में चलन आ रहा है, तो इस नस्ल को सुगमता से पाला जा सकता है। जो जमुनापारी नस्ल है वो बड़े आकार की होती है, सफेद रंग की होती है, उसकी नाक तोते जैसी, इसीलिए उसे पैरट नोज करके भी बोलते हैं। और इसमें जो वयस्क बकरा या बकरी है उसकी जो लंबाई है और ऊंचाई है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और जमुनापारी नस्ल की विशेष उपयोगिता इसके दूध देने के लिए है। अगर अच्छे सिलेक्टेड एनिमल्स को हम रखें तो ये बकरियां एक ब्यात में 400 से 500 लीटर दूध दे देती हैं। हालांकि वर्तमान में, क्योंकि बकरियों के क्षेत्र में जो मिल्क कलेक्शन और सप्लाई चेन न होने की वजह से, अभी इसको ईद के लिए इसके नर बच्चों को काफी पाला जाता है।
1: जी
0: जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, चूंकि वहां पर जलवायु काफी शुष्क है और हरे चारे की भी कमी है, और ज्यादातर जो किसान है वो बहुत कम साधनों के साथ बकरी पालन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बुंदेलखंडी नस्ल है वो बहुत अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि ये बहुत हार्डी या टफ ब्रीड है।
1: जी
0: और जो रोहिलखंड है उस क्षेत्र में एक रोहिलखंडी नस्ल है, साथ ही साथ एक पंतजा करके जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है वो भी बहुत सर्वोत्तम नस्ल है। और जो टेम्परेट रीजन है जिसमें के हमारा अल्मोड़ा, नैनीताल आदि क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ के लिए जो चौगरखा एवं चैगू, ये दो नस्लें हैं। तो चैगू जो नस्ल है वो ऊन और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है, और जो चौगरखा नस्ल है वो केवल मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। जब हम मांस उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि कम उम्र में वयस्क होना, एक बार में 2 बच्चे देने की दर अधिकतम होना, और उसके जो बकरी है उसमें जो गोश्त की संख्या है यानी कि ड्रेसिंग परसेंट का अधिक होना, तो ये सब उपयोगिताएं इनमें पाई जाती हैं। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उस क्षेत्र के लिए बर्बरी एवं ब्लैक बंगाल दोनों ही नस्लें उपयोगी हैं। और जो ब्लैक बंगाल है वो अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती है। ये बकरियां लगभग 6-7 माह की उम्र में वयस्क हो जाती हैं, और इन बकरियों की विशेष खूबी ये है कि इनमें प्रजनन दर यानी 2, 3, 4 बच्चे देने की दर बहुत अधिक है। तो जो किसान भाई हैं तो वो अपनी जो साधन और उद्देश्य के हिसाब से बकरी की नस्ल का चुनाव कर सकते हैं कि वो मांस उत्पादन में जा रहे हैं या दूध उत्पादन में जा रहे हैं या दोनों में ही जा रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, एक बार थोड़ा सा, चूंकि जो किसान समझ पा रहे हो, तो मांस उत्पादन के लिए कौन सी दो ऐसी प्रजाति बताई आपने?
0: मांस उत्पादन के लिए बर्बरी एवं ब्लैक बंगाल ये सर्वाधिक उपयोगी हैं, और न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे एशिया में मांस उत्पादन के लिए विख्यात हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चर्चा की हमने नस्लों के ऊपर, तो मुख्य तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और बीच में बुंदेलखंड रीजन तक आपने सारी जो नस्लें हैं, उन्नत नस्लें हैं, इनका पशु अगर किसान भाई अगर चाहते हैं बकरी पालन करना तो ऐसा कर सकते हैं। और देखिए, विषय में एक बात और हमने जिक्र किया था कि नस्ल सुधार का कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर कैसे करें किसान भाई?
0: देखिए, ग्रामीण स्तर पर क्या है कि जो किसान हैं उसमें ज्ञान का अभाव मान लें या कुछ और भी चीजें हैं, तो उसके चलते वो जो शुद्ध नस्ल के जो नर बच्चे हैं उनको या तो वो कम उम्र पर ही किसानों को बेच देते हैं या उनको खस्सी करा देते हैं, और वो उन्हें फिर किसी भी

0: नस्ल के जो भी या अवर्गीकृत जो नर मिलते हैं उनके साथ वो समागम करा देते हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो शुद्ध नस्ल के जानवरों की उपलब्धता की बड़ी भारी कमी हो रही है। इसके चलते ग्रामीण स्तर पर सतत आनुवांशिक सुधार भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि आप शुद्ध नस्ल के बकरे से ही अपनी बकरियों को गाभिन कराएं। बकरा शुद्ध नस्ल होने के साथ साथ आनुवंशिक गुणवत्ता का भी होना चाहिए, यानी जैसे कि अपनी नस्ल के अनुरूप उसकी जो लंबाई चौड़ाई शरीर भार अच्छा हो, उसकी जो माँ है वो अधिक दूध देने वाली हो, और अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि उसका जो बाप है उसकी जो बच्चियां हैं उनका भी दूध अच्छा है। अब बात यह आती है कि जो पहले ब्यात में जो नर बच्चे आए उनको आप खस्सी करते जाएं, और जो मादा हैं उनको फिर क्रमशः ही शुद्ध नस्ल के बकरे से प्रजनन कराएं, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि आपका झुंड पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता। तो व्यावहारिक स्तर पर लगभग 3 पीढ़ियों में शुद्ध हो जाता है, हालांकि जो थ्योरेटिकली इसको शुद्ध होने में 5 पीढ़ियां लगते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि अपने जो जो ग्रामीण भाई हैं वो अपने यहाँ पर शुद्ध नस्ल का ही बकरे का उपयोग करें, और इस बकरे को 1-1.5 साल के बाद अपने झुंड से बदल दें। झुंड से बदलना इसलिए आवश्यक है जिससे कि अंतः प्रजनन न हो, यानी यही बकरा अपनी जो बच्चियां हैं या बहन हैं उनके ऊपर ये उपयोग में न ला जाए, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बढ़ने पर उनकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक शक्ति है, वो बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप अधिक गुणवत्ता के बकरियों का पालन कर रहे हैं तो उनकी जो पोषण की रिक्वायरमेंट है वो भी अधिक होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो बकरी ज्यादा दूध देती है, ज्यादा बच्चे देती है, जो बच्चे तेजी से विकास कर रहे हैं उनको अतिरिक्त सप्लीमेंट्री कंसंट्रेट राशन की आवश्यकता होगी। ये अगर उन्हें उपलब्ध होता रहेगा तभी किसानों को अधिक आर्थिक लाभ होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं, कई किसान ऐसे हैं जो बीजों का उत्पादन करते हैं, केवल बीज बेचने के काम में लाते हैं। ऐसे ही अगर जो हमारे बकरी पालक भाई हैं, अगर वो केवल शुद्ध नस्ल के पशु बेचने का कारोबार करना चाहते हो, या ये यूं कहें कि एक तरह का व्यवसाय या एक तरह का उद्यम करना चाहते हो, तो उनको किस नस्ल के पशु रखने चाहिए?
0: देखिए, आपने बहुत ही उपयोगी प्रश्न किया है। अभी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पिछले लगभग 10 वर्षों से एक अपनी मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ पर चूंकि बर्बरी, जमुनापारी और जखराना ये 3 नस्लों के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक लोगों की जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, यानी कि एज ए सीड सप्लाई सेंटर के रूप में, तो वो बर्बरी की आ रही हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश से आ रही हैं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत और अब तो कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। तो अगर कोई किसान भाई शुद्ध नस्ल के जानवरों को एज ए सीड प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसे अपना जो फाउंडेशन स्टॉक है, यानी जिन बकरियों ये बकरों के समागम से उन्हें उनकी वृद्धि करना है, संख्या को बढ़ाना है, तो उनके जो जानवर हैं वो न केवल शुद्ध नस्ल के हों बल्कि उच्च गुणवत्ता के हों। जब हम उच्च गुणवत्ता की बात कहते हैं तो यानी कि उनकी जो प्रतिदिन शरीर बढ़वार वृद्धि, 2 बच्चे देने की दर, दूध अधिक देने की दर, ये सब अधिक होने चाहिए। तो उन्हें ऐसे जानवरों का चुनाव करना चाहिए, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है उसमें जो कम उत्पादकता वाले जानवर हैं उनको वह क्रमशः कलिंग करते जाएं। जब इस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता बढ़ेगी। इस क्रम में एक अत्यावश्यक बात है कि हम किन्हीं जानवरों को तभी सिद्ध कर सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता का है जब हम उनका रिकॉर्ड रखें, यानी कि अमुक बकरा या बकरी है उसका शरीर भार वृद्धि दर इतना है, एक हमारे पास रिकॉर्ड होगा, एक मिल्क रिकॉर्ड होगा, एक ब्रीडिंग रिकॉर्ड होगा, तो इन रिकॉर्ड्स के आधार पर ही हम यह तय कर सकते हैं

0: अमुक जानवर आनुवंशिक रूप से उच्च गुणवत्ता का है। तो जो भी भाई हमारे सीड सेंटर के रूप में काम करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे जानवर लेने हैं, तो वो हमारे संस्थान को भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको जरूर करें, वही अंततः सिद्ध करेगा कि कौन जानवर उच्च गुणवत्ता का है या नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब देखिए, आज हमने बात की बकरियों की नस्लें, उनकी उपयोगिता और ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार किस प्रकार से करें। अब समय आ गया है एक प्रश्न पूछने का। तो जैसा किसान भाइयों से मैंने आग्रह किया था कि प्रश्न का उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप संख्या 8439206238 पर करें। तो डॉक्टर साहब आज का प्रश्न बता दें।
0: आज के इस कंटेक्स्ट में मेरा प्रश्न ये है कि जो बर्बरी है वो मांस उत्पादक नस्ल है या दूध उत्पादक नस्ल है या दुकाजू नस्ल है, यानी दोनों उद्देश्यों के लिए पाली जाती है।
1: एक बार प्रश्न को मैं पुनः दोहरा देता हूं। जो बर्बरी नस्ल है बकरी की, उसका उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है या मांस के लिए किया जाता है, या दोनों मांस उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है? आप हमें प्रश्न जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम पते के साथ भेजें। तो डॉक्टर साहब आज आपने उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद साहब।
2: बकरियों की नस्लें, उपयोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर नस्ल सुधार, यह विषय पर जानकारी ले रहे किशन भैया। आप जानकारी दे रहे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और इनसे भेंट करी विजय सिंह नौलखा ने। निश्चित रूप से बकरी पालन को जो काम है हमारे भूमिहीन किसान, गरीब किसान करें हैं, और ये ऐसी जो जानकारी हैं उनको अपने बकरीन के स्वस्थ रखवे में, उनसे अच्छा उत्पादन लेवे में निश्चित रूप से लाभकारी होगी। कार्यक्रम में आप सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारा सो लोकगीत, जय गायो है बनवारी लाल शर्मा ने।

बंसी बजाए के कहाँ निकर गए मेरे बांके सावरिया। बनवारी लाल शर्मा के स्वर में आप सबने लियो या लोकगीत को आनंद। तो किसान भैयाओ, ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम की समय अवधि अब खत्म है रही है। अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे होगी मुलाकात गीत संगीत और ज्ञानवर्धक चर्चन के संग। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

आपने सुनी ये भक्ति रचना जगजीत सिंह की आवाज में। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं फिल्म केदारनाथ से ली हुई भक्ति रचना अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में।

0: ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं रेखाचित्र नीतू मौसी, प्रस्तुत कर रहे हैं मनमोहन गुप्ता।
1: नीतू मौसी को नाम कानन में पढ़ते ही बाकी ममता से भरी छवि को चित्र आंखन में बनके नहीं हृदय में उतर जाए है। मुस्कामती मुखाकृति, लाल चट होठ, पान चवामते भये ऊंचे मस्तक पे जो चमक दिखाई दे, गोल पैसा सी लौंग गोरी चट मौसी, नीतू मौसी के नाम से विख्यात है। यूं तो नीतू को अर्थ ही एक सुंदरता को प्रतीक है जो मौसी पर पूरा सटीक है। कद काठी सो नीतू मौसी लंबी चौड़ी है, पहनाव सो नीतू मौसी ने हमेशा

छपेमा रंग बिरंगी धोती काच के नाई अपनो आकर्षक स्वरूप स्थापित कियो है। नीतू मौसी को प्रभाव अपने घर और परिवार में ही ना है, समूचे समाज और गांव में पूरो रहे हुए। मौसी ने जो बात कह दई समझो वो पत्थर की लकीर रह गई, बाकी बात को टाल नहीं सके। फिर भैया टालबे की बातें कहा है, बाने तो हमेशा 23 सवन के हितन की ही बात करी है। परिवार में आपसी सामंजस्य राखवे की साक्षात प्रतिमूर्ति और प्रतिच्छाया सो स्थापित नीतू मौसी को सभी पूजनीय माने हैं। सास बहू के आपसी मनमुटाव के मूल कारणन को ढेर से सुन के नाई दोनों पक्षन में समझौता कराए हुए को गुण नीतू मौसी नहीं देखो गया है। या लिए जब कहो काऊ थोक के काऊ से घर में नेक बर्तन खटके तो नीतू मौसी को बाकी भनक बढ़ते वो उलायती सो वहां पहुंच जाए। पैरन में चांदी की पाइजेब बजते हुए घुंघरून की छम छम करती जब आवाज काऊ गली गरारी में सुनाई पड़े तो समझ लियो कि नीतू मौसी कोई पदार्पण भयवाय। नीतू मौसी सामाजिक समरसता और धर्म निरपेक्षता की एक जागरूक महिला शिक्षा की हिमायती और सवन के अधिकारन की रक्षा करवे की पूरी संविधान की संज्ञा कही जाए तो को अतिशोक्ति ना होगी। गांव में बड़े बूढ़े सो हमने सुनी है कि नीतू मौसी को पियर लखनऊ हो, बाकी पिताजी और भैया और मैयाऊ वा समय के अच्छे स्कूल के विद्यार्थी रहे बताए। यासो नीतू मौसी हिंदी अंग्रेजी को अच्छो ज्ञान रखे। आजकल अपने जो ये मोबाइल हैं कंप्यूटर हैं इनको जो चलन और जो जमावड़ो हमारे घर में चल रहे हो ने वाको ज्ञान नीतू मौसी ने अच्छी तरिया ले लियो और या किताई अपने जो है नाती जो है राघव हैं चिराग हैं बिंसु कह के लाला ने हमनो बताए भाई ये कंप्यूटर कैसे चले और या मोबाइल में खाका चीज होए तो बाकी बारी बारीकी इनको खूब समझ के नाई और बाकी अधिक प्रयोग सो बालकन की आंखन को जो हानि होए ना वाको पूरा गहन अध्ययन कर लियो नीतू मौसी ने। जातरियासो कहो जमाने में बड़े बूढ़े कहो करें कि साहब प्लेग आयो और या महामारी सो घर घर में मौतन के जो है शोर रह गए थे कि भाई एक गयो और एक आयो एक गयो एक गयो। यही तरिया आजकल जो ये कोरोना महामारी 2 वर्षन तक कहर मचाई रही है या सो आज पूरा विश्व भयभीत है कि नाई और या कि मार को झेल रहे है या कि बचाव के ताई मास्क लगाए वो एक दूसरे सो दूरी राखे वो बेर बेर हाथ और मुंह धोए वे को जो संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारन में मुख्य रूप से दियो जाए है वाक्यू पूरी जानकारी हमारी नीतू मौसी ने अर्जित करके नाई समाज में बाकी बचाव के ताई भी संदेश दे के नाई लोकप्रियता अर्जित का बहुत बड़ा परोपकार को काम किनो है। और यहां तानू नीतू मौसी तो कह कि देखो ये कोरोना ना या तो भयंकर वायरस जो छूट रहे हो तो बाकी ताई भी हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जाके ताई उत्तर प्रदेश सरकार सो नीतू मौसी को सम्मानित जो है किया गया है। कोरोना की जंग सो लड़वे में सफलता के ताई केंद्र सरकार को भी अभिशंसा करी गई है कि भाई नीतू मौसी जब ऐसा परोपकारी कार्य कर रही है तो फिर तो बाकू जो है केंद्र तेव जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रधान जी हमें बताए रहे थे कि नीतू मौसी के ताई केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने बात ही लिख दी है। यात्रियां सो हमारे नीतू मौसी हमारे काम की ही ममता को सागर और परोपकारिता को सरोवर भी प्रमाणित ना भयो। आज वो प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर कोरोना की जंग से लड़वे और बाकी बचाव के ताई घर घर जाए के संदेश देवे वारी जागरूक महिला के रूप में प्रतिष्ठित है।

0: या बात को पूरी जनता कह रही है। नीतू मौसी ने समाज में सबनते बड़ो जो काम करवे को बीड़ा उठायो है कि कुआरी गरीब कन्यान के ब्याह के करवे के लिए हर साल वो पुरजोर आयोजन करे और वहाँ मुक्तेरी कन्यान को सामूहिक ब्याह करें। या आयोजन में मुख्य बात नीतू मौसी की बड़ाई की जे है कि मौसी जात पात से कोसन दूर राग के नाई और ब्याह को समारोह अनेक के घर जे बसा दे। इन सामूहिक विवाह के आयोजन में नीतू मौसी की ओर से छोटी छापरी के ताई सभी आवश्यक घरेलू सामान और सुहाग के चिन्ह आदि दिए जाएं। उड़ैया बिछैया की संग संग पलंग और गैस को चूल्हा सिलेंडर के संग कन्यादान में देखे नाई नीतू मौसी ने जो सम्मान पायो है बाकी को जो है सानी नाई। नीतू मौसी जो है वो सामूहिक कन्यान के या ब्याह के आयोजन में हिंदुओं के ताई हिंदू पद्धति सो और हमारे मुसलमान जो कन्यान की ताई जो है मुस्लिम रीति सो पाण ग्रहण समारोह जब करे न तो वो दृश्य तो बस अलौकिक हो है। एक तरफ से वेद मंत्रण की जो है ध्वनि गूंज उठे और दूसरी माओ जो है कुरान की आयतन के उच्चारण सो सामूहिक ब्याह को जे स्थल मनोरम है जाए है जाकू देखवे के ताई दूर दूर ते देश के अनेक भागन सो लोग आवे है और दांतन तरे उंगरिया दबा जाए। बेटा बारिन की जैवे की पंगत एक तरफ तो दूसरी माऊ बेटी बारिन की पंगत जा समय जे नहीं होए तो मधुर मांगलिक गीतन की मधुर लहरी सो पूरा मंडप गुंजित है जाए। जे सब आए को जो श्रेय है वो नीतू मौसी को ही दियो जाए है। नीतू मौसी के या सामूहिक विवाह के आयोजन में सहायता की ताई शहर के युवक और युवतीन के टोल जुट जाए। समाज के अनेक वर्गन सौ कन्यादान में बहुत ही जो है योगदान जो है दियो जाए है। विवाह मंडप में दूल्हा दुल्हन की जोड़ी फेरा लेमते भये और दूसरी माऊ निकाहा को दृश्य जो स्थायी रूप से आखिन माई जब आवे तो अपूर्व आत्मीयता सो आंसू ढर के बिना नाए रहे हैं। नीतू मौसी आज तानू लगभग 100 कन्यान की मैया है गई है और इतेकन की ही सास बन गई है। तीज त्योहार पे बिनकू बुलाए वो भी नीतू मौसी का वो भूल नहीं पाई है। जे तो सामूहिक निर्धन कन्यान के ब्याह के आयोजन की प्रमुखता नीतू मौसी की वर्ष में एक बार हुआ ही है पर देव उठनी 1100 लगाए के और जो है देव सो में जब तानू गांव में कहूं भी काऊ के घर कन्या को ब्याह होए तो नीतू मौसी कन्यादान दिए बिना रह ना और वो कन्यादान जो है दौड़वे जो है तो चली जाए। और तो और आसपास के गांवन में नीतू मौसी के ताई खूब नौतियां में जिनमें मूसी की अहम भूमिका सो सवन की आंखन माए खुशी के आंसून की गंगा जमुना बह निकले है। गांव में काउ महिला को जनो जाप होए तो वे जो है बाकू जो मौसी लपक के नाई और तुरंत जो है अस्पताल ले जाबे की जो कोशिश करे वहां में और वो बताए कि भाई देखो हमें अस्पताल ले जाना चाहिए क्यों के जो है ये जनो जापो कोई ऐसो खेल ना है कि गुड्डी गुड़िया को खेल हो। तो यात्रिया से वो जागरूकता को जो है संदेश नीतू मौसी हमारे पूरे समाज को दे के नाई और स्वर्णिम शिखर पे सबन के हृदय में स्थापित है गई है।
1: ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे रेखा चित्र। नीतू मौसी प्रस्तुत कर रहे थे मनमोहन गुप्ता।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, संध्या 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंदीदा फिल्मी गीत तो कीजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 94-122-25-575। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में

0: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 464,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइकली से छिटाकसी हो सकता है। बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

जिया दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तार, फिर भी नई उम्मीद, नई आशाओं और आपके ढेरों संदेशों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। तो करते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। संदेश प्राप्त हुआ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण मंगला और आशीष इंगले। भागलपुर से जुड़े दिलीप कुमार सोनी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पपी भाटिया। अढ़ार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से जुड़े तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु, रिदान खुराना। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्वी चौहान। मोताला महाराज से जुड़े राज गवई, राजवीर गवई। नांदेड़ से संदेश प्राप्त हुआ प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज, पीआर जैन। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप, एकम दमन, अभिजोत। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू और भाविक सिक्का। तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक, आयुषी श्रीवास। काटा रोड वाशिम महाराज से मास्टर विट्ठल सुरोशी, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशी। मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित लकी, तान्या नारंग। छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, मुकेश और इनके सभी परिवारजन। गिरिडीह झारखंड से यासीन अंजान, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा और चाहत। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के आप सभी श्रोता, मेहर ममता, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री, श्याम कुंवर। रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला, गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश। चकला बाजार समाना शहर से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू, हसमुखलाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति, संजीव और इनके सभी परिवारजन। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्याम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विकी, नानू, रौनक और इनके सभी परिवारजन। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, पूजा और श्रव्या रामटेके। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी और सोनम अदीबा। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा और अनामिका शर्मा। संदेश भेजा है बिहार से। फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके सभी परिवारजन। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज और इनके सभी साथीगण। वरंगल से मोहम्मद खजा और आयशा तबस्सुम। जमशेदपुर से निशा कुमारी, रेशमा और इनके सभी साथी। माहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल, रसीद, अनम और यशव। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रकर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक। महाराष्ट्र से जुड़े सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रतिमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी देशमुख। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू और तरुण। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, प्रतिमेश, निवृत्ति और संजय कुमार चौहान। निवासा महाराज के श्रोता संकेत सकट, नंदा रामदास, जुबेदा, कोमल और स्वाति। मध्य प्रदेश से जुड़े लाडला लाडली जी चौबे और इन्हीं के साथ रिमझिम। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। लोनी से इस्लाम गुनोरी और दानिश। चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ, नीलोपर। जलालाबाद वैसे सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल दिशानी, निमित आहूजा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, विवान और इनके सभी परिवारजन। यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, देवाश्री, मेघा, अनुराग मोहन। महादेव पारा से मीरा, सिमरन और माया राजवाड़े। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत, सोनम वर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना मीका सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, सोंगा छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित कुमार, देविका गजेंद्र और हेयांश चंदन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता रज्जन, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, गांधी रोड गंजुडवार।

से मोहम्मद आशिफ शेख, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद, फातिमा और इनके सभी परिवारजन। मोताला मारा से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती, ओम कुमार और गौरी सुरलकर। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना। जनकपुरी से पिंटू, राजेंद्र और इनके सभी परिवारजन। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा और जयपाल, विनोदपुरी। अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, बेगम गुलनाज हाशमी। गंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम, नजमा और सरिता गौतम। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। मामूलवाड़ी नांदुरा से एस आर आडोकर, विजया आडोकर। भावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, सुशील, शेरी वडने रकोला से अरुणा, बलदेव, आदित्य, दामोदर। प्रकाशनगर मथुरा से खड़क सिंह छौकर जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल, कृष्णा, राहुल धीमान, कोमल आंचल और इनके सभी परिवारजन। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, संजय, राधा, अनिल, संदीप और दर्शन। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजबिये। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग आकांक्षा, माही मलिक। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं किशोर और इनके सभी परिवारजन, अंबिका, आवास कॉलोनी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुड़लाल, अविराज और इनके सभी परिवारजन, साथ ही साथ शुभदीप सिंह। यवतमाल महाराज से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनुश्री। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत। कोली नांदेड़ मारा से नायक नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम कुमार, साई गायकवाड़। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा नायक, टिल्लू मोहन। कैथल हरियाणा से जुड़े मधु नायक। अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं हिंगोली मारा से शाहजी बोर्ड के, नंदा, हनुमान बोर्ड के, अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाडे, स्वराज जमदाडे। जैन मंदिरवारी गली से आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं आसना अंसारी और कैफ अंसारी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार संतोषी, पम्मी हर्षिता और निशांत। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राहुल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। गणेशपुर गंजुडवारा इटा उत्तर प्रदेश से आप सभी एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान। कुम्हार हीरा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना, अक्सा नाजिया, इब्राहिम, अदीब, हसन। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, रही मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। कुम्हारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा।

अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश, रिया, कुमकुम, साक्षी और इनके सभी साथी। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है।

धर्मेंद्र सिंह चावला भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ सायना, निवान शर्मा। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम जिस्म टू, आवाज के की।

भिलाई छत्तीसगढ़ से जुड़े मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

इसी गीत को सुनना चाहा राजकोट गुजरात से रश्मि झरना ने, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी नीरा, ज्योति पहलाद, उमेश और प्रमिला वर्मा ने। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान।

धुरंधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले आपको बताते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 11 मई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। यदि आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं जो कि संबंधित होंगे हृदय रोग से और इनके कारण, लक्षण, साथ ही साथ इनका निवारण भी आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 25।

3135 और मोबाइल नंबर रहेगा 9412-25575। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। कार्यक्रम का विषय ध्यान रखिए, हृदय रोग संबंधी कारण, लक्षण और निवारण। दिन रहेगा सोमवार 11 मई। समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

वेलकम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा आनंद राज आनंद ने, संगीत भी आनंद राज आनंद का।

स्त्री टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे पवन सिंह, सिमरन चौधरी और दिव्या कुमार को। संगीत था सचिन जिगर का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो आइए, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सैयारा के कुछ गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत को आवाजी दी तनिष्क बागची, फहीम इरशाद कामिल और अरशान निजामी ने। और इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी

0: की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल

0: रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में

करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए

0: अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं शुक्रवार के दिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरंग लेकर। तो आइए शुरू करते हैं गीतों और फरमाइशों का सिलसिला शुरू। कार्यक्रम की इस पहली फरमाइश के साथ संदेश मिला कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं परभणी महाराज से रूपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और संगई परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री, श्याम कुमार। बरवट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये।

वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का ही संदेश प्राप्त हुआ। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से जुड़े इब्राहिम सद्दाम, अदीब अक्सा साइना और सैयद मसरूर। कोली नांदेड़ मारा से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओम कुमार साई गायकवाड़। मोहाली पंजाब से जुड़ चुके हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गांव उस पार से वीरेंद्र कुमार भोली, मनीष काना कोमल, पिंकी प्रीति लड्डू वैष्णवी, ओमवती मनोज, दोजीराम और यादराम। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष और डब्बू बब्बू। फाजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली, मोनिका और रानू। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित लकी, तान्या नारंग जुड़ चुके हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष, नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका, आदित्य, अंजलि जंगेल। नेहरू चौक पेटर से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता जाधव। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी, दिशा गोस्वामी। करणवीर हाउस भुच्चू कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं गोपी की नगरिया से मिठ्ठलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण भोला, नमन और इनके परिवारीजन, गांव नौदरा से कोमल मास्टर, जसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। गांव कुमोदवन से रमेश, सुनील, रचना और इनके सभी साथी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। चंडीगढ़ से जुड़े सतीश अनेजा, विमला अनेजा। दत्रियंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। दरियापुर भावली महाराज से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले। शेरी वडनेरा खोला से बलदेव, अरुणा और आदित्य दामोदर। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार का ही संदेश प्राप्त हुआ। मजनू कटिल्ला से कमल, मधु, सागर बालूजा।

गीत को स्वर दिए हैं AR रहमान, फहीम अब्दुल्ला और इरशाद कामिल ने। संगीत AR रहमान का, गीत रचना इरशाद कामिल की। फिल्म का नाम तेरे इश्क में।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, सुधीर नूतन, प्रतिभा इशप्रीत और इनके सभी परिवारजन मॉडल टाउन करनाल से। राहट गांव कैंप अमरावती महाराज से हर्ष आरामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और इनके सभी परिवारजन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार। गणेशपुर गंजुड़वारा इटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा सरफराज, कुलफराज, बेबी मुस्कान। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ और नीलोफर। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी, अंकित कांगड़ा। नांदेड़ से जुड़े प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज, बी आर जैन।

बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। हरिशंकर, सोनी, द्रौपदी, रानी, अंबिका और इनके सभी परिवारीजन। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुबगू भाविक सिक्का। दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप सुशील येले, शेरीवड्डी रकुला से अरुणा बलदेव, आदित्य दामोदर जुड़ चुके हैं। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा।

सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष। पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का ही संदेश प्राप्त हुआ। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट जिला बिजनौर से वक्कार फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदारानी, हिना कौसर। महोली रोड मथुरा से धीरेन्द्र सारस्वत, जनकपुरी महोली रोड से राजू बाबा, इंद्रमोहन चामुंडा मंदिर से और इनके सभी परिवारी जन जुड़ चुके हैं। सप्तरंग श्रोता परिवार जुड़ा है कुम्हार गली श्रीरामपुर से। आप सभी श्रोता अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। अगली फरमाइश के साथ पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिशोर, प्रीति, छाया बंछोर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से जुड़े दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर और सुनील जनागल। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, राजप्रकाश, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरुकीरत और गुरशबद सिंह। मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर। आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म मासूम से। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। सिरसा हरियाणा से प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव और इनके सभी परिवारीजन। आकोट से जुड़े विनायक बेंडे, मंगला, शुभम और पवन। नलेश्वर नगर नरवेल मारा से पीएस नहापकर, निर्मला विशाल नहापकर, मलकापुर से नारायण, राजकुमार और आशीष। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा चाहत और सादिया। पांचालिका पंजाब से खेड़ा परिवार जुड़ चुका है आप सभी, भूषण, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवनीश और आरबी खेड़ा, इन्हीं के साथ परिवार के सभी सदस्य। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा

गोप, प्रेम कपिल, शिवांश, संगीता लिपि, दीपाली गोप। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। झारखंड सुपाही से निशा कुमारी, रेशमा और देबेन। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल विशाल, शीला गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय रानी महिमा, नीतू वैदिक वेद। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। काटा रोड वाशिम मारा से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे। सादुलशहर राजस्थान से जुड़े रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत और लवप्रीत कौर। अगली फरमाइश के साथ बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। गंडोद्वारा से आशिफ अजीम, मोहम्मद फातिमा और मुन्नी सलमानी। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश कर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम वो लम्हे, आवाज़ के की।

श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न होता है। अगले शुक्रवार को फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

अमर सिंह गौना कर लाया है। लेकिन यहां मुजरे तक को नहीं आया और उसको ऐसा घमंड छाया है, अजी हुक्म दूली करी आपका खौफ नहीं खाया है।

0: अगर उसको डर होता तो छुट्टी पूरी होने पर यहाँ फौरन हाजिर होता। अमर सिंह को बड़ा गुरूर है हुजूर, उसको बड़ा घमंड है, वो आप और आपकी हुकूमत को कुछ नहीं समझता।
1: आप कहना क्या चाहते हो?
0: मेरा मकसद यह है कि अमर सिंह राठौर को 7 रोज के बजाय 14 रोज हो गए, अब तक हाजिर नहीं हुआ, आखिर क्यों? उसको गुरूर है
1: मियां।
0: हुजूर
1: आपका ख्याल बिल्कुल गलत है।
0: वो कैसे सरकार?
2: अमर सिंह को सलाम।

ये आप कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं। जिन जवानों की शादियां होती हैं नई रानी तो सभी की आती है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपने अगर अमर सिंह को माफ कर दिया तो ये झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा हुजूर।

0: बात है, आपने राजपूतों को इतना सर पे चढ़ा रखा है, किसी को जिलेदार, किसी को सूबेदार, किसी को थानेदार, किसी को तहसीलदार, और मेरी कौम के जितने लोग हैं सबको चौकीदार बना रखा है आपने।
1: मियां,
0: मकसद है इसका?
1: जो आदमी जिसके काबिल है उसको हमने वही ओहदा दिया है।
0: तो इसका मतलब यह है कि आप इन राजपूतों से डरते हैं?
1: नहीं।
0: फिर अमर सिंह को आप क्यों माफ करने के कह रहे हैं?
1: वो बहादुर है।
0: वो बहादुर है तो हम लोग क्या गीदर हैं? आपने हमें समझा क्या है हुजूर? ये शेखों की हड्डियां हैं, ये लड़ने के लिए कब्र में भी तड़पा करती हैं। आप बुलाइए उसको। आप हमें समझते क्या है? आप कुछ खौफ न कीजिए और बुला यहां उसको लीजिए, हम तलब कर लें जुर्माना, अमर सिंह पर राम सिंह लड़के को करो रवाना।
1: जुर्माना आप वसूल करेंगे?
0: जुर्माना बिल्कुल मैं वसूल करूंगा, और कौन करेगा?
1: आप।
0: यानी आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? क्या अमर सिंह कोई हवा है?
1: जब दरबार में अमर सिंह आता है तो उससे आप आंख भी नहीं मिला सकते।
0: आंख भी नहीं मिला सकते
1: उससे आप जुर्माना वसूल करेंगे?
0: हम लोग तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं, हम गंवारों के मुंह नहीं लगते, ना उनसे नजर मिलाते हैं, इसमें हमारी तौहीन है।
1: जब अमर सिंह आता है दूर भाग जाते हो तुम।
0: मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम हूँ, वो हमारा मुलाजिम है, हमारी उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी बराबरी नहीं। आप बुलाइए राम सिंह।
1: तो जुर्माना आप वसूल करेंगे?
0: बिल्कुल मैं वसूल करूंगा।
1: तो बुलाइए राम सिंह को।
0: राम सिंह, मुझे इन लोगों का नाम लेने से भी नफरत है, लीजिए हाजिर है राम सिंह।
1: राम सिंह को समझा दिया जाए?
0: जी
1: ठीक है,
0: बहुत अच्छा। राम सिंह जाकर कह दे अपने चाचा उस देहाती गंवार बेवकूफ अमर सिंह से, अगर अपनी और अपने खानदान की खैरियत चाहता है तो 7 रोज के 7 लाख रुपए हमारे कदमों में रख जाए, वरना उसका नौबेला ठोकरों से उड़वा दिया जाएगा।

ये हाय सब तरह हूँ लाचार और मैं खड़ा बुराई सुनू चचा की और ये

0: शरद बाकी और कर सकता कुछ नहीं बिना मेरे लिए सदा चाचा की।
1: कैसे आना हो राम सिंह?
0: ये किस गफलत की नींद में और ये नहीं पलंग पर सोए और चाचा मजा शराब का तुम्हें

ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ।

पड़ेगा बेशक जाना, ये सात रोज के सात लाख।

0: चाची
1: क्या बात है राम सिंह?
0: क्या कहीं दरबार के लिए जा रहे हैं?
1: दरबार?
0: जी हाँ।
1: तुम कहाँ से आ रहे हो?
0: मैं दरबार से ही आया था।
1: और चाचा तुम्हारे दरबार जा रहे हैं?
0: जी हाँ, उनको याद किया है।
1: क्या बात है?
0: बादशाह ने याद किया है उनको।
1: नहीं राम सिंह, कोई बात जरूर है।
0: नहीं, बात कुछ नहीं है।
1: और तो चाचा ही तुम्हारे इस तरह कैसे जा सकते हैं?
0: अजी वो गुस्से में जा रहे हैं।
1: तुम्हें कुछ कहा होगा ना?
0: हाँ, मैंने कहा है।
1: कहा है?
0: जी हाँ।
1: क्या बात है, सच बात बता दे बेटा।
0: बादशाह ने उनको याद किया है।
1: बस?
0: जी हाँ।
1: कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही?
0: नहीं, और कोई बात।
1: क्या चाहते हो?
0: वो
1: जब जा ही रहे हैं तो उन्हें जाने दो। क्या बात है?
0: उनको रोकिए ना।
1: क्यों?
0: वो गुस्से में जा रहे हैं।
1: अच्छा, वो गुस्से में जा रहे हैं। असल बात पे नहीं आ रहे हो कि कोई बात वहां जरूर ऐसी कही गई है और वो तुमने अपने चाचा जी को बता दिया है, इसी वजह से वो जा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: और मैं क्या मार खाऊंगी? मैं नहीं कहूंगी उनसे कुछ भी।
0: आप जाइए ना, रोकिए।
1: जा तू आराम कर जाके। कभी कभी ऐसी बातों को छिपाना भी पड़ता है राम सिंह। तू तो बच्चा है, समझता नहीं किसी बात के लिए।
2: किसे आराम के लिए कह रही हो? किसे आराम करा रही है?
1: मैं तो कुछ सोच रही थी मैं कैसे उठ के चली आई हूँ। मैं तो आराम कर रही थी, भला यहाँ मैं कैसे आ गई हूँ। और आप?
2: मैं दरबार के लिए जा रहा हूँ।
1: दरबार?
2: हाँ।
1: ये प्राणनाथ, दरबार जाने का भला समय है कोई? सारी दुनिया आराम कर रही है और आप दरबार जाना चाहते हैं?
2: शहंशाह अभी बुलाया मुझे किसी जरूरी काम से।
1: अच्छा, जरूरी काम है। मगर महाराज, बुजुर्गों ने कहा है कि समय से ही हर काम को करना चाहिए।
2: अरे इसमें समय,
1: मेरे ख्याल से तो अभी जाना आपका अच्छा नहीं है।
2: तुम कहना क्या चाहती हो?
1: हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ कह तो नहीं रहे हैं। अरे जा।

0: क्या हुआ? मैं कोई बालक?
1: देखो महाराज, रात का वक्त है और करीब करीब मेरे ख्याल से दोस्त और दुश्मन बराबर ही रहते हैं। रात के समय आप अकेले जाएंगे तो अच्छा है क्या?
0: तो हुआ क्या है अचानक, समझ में नहीं आ रहा कुछ?
1: नहीं हुआ कुछ नहीं, भगवान न करे कोई बात हो। अरे क्या सूझी बराबर

0: पढ़िए से क्या लिखा
1: है। मैं पढूं?
0: और क्या,
1: तो आपने पढ़ लिया तो मैंने पढ़ लिया, बातें है कि महाराज
0: मुझे जाना बहुत जरूरी है।
1: नहीं, जाना तो आपको जरूरी हो सकता है क्योंकि काम ऐसा है आपका, लेकिन चलो पढ़ के देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। महाराज एक प्रार्थना करूं?
0: क्या?
1: ये परमाना इतने समय कौन लेके आया?
0: राम सिंह लेकर के आया था इसे।
1: राम सिंह?
0: हाँ।
1: अकेले यहाँ आ गया?
0: क्यों?
1: वो तो बालक है।
0: बालक इसमें क्या बात है, जवान है इसमें।
1: वो तो ठीक है महाराज, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नीचे नहीं आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है श्रीमान,
0: हम पढ़ते
1: वो नहीं। आपका नाम लिखा हुआ है श्रीमान ठाकुर साहब जी, आज की रात यानी जो रात जा रही है लगभग आधी रात होने को आ गई है, आज की रात आप चैन से बसर करके और सुबह दरबार में हाजिर हो जाइए, वरना हर दिन का 1,00,000 रुपया आपके ऊपर जुर्माना पड़ेगा दस्तखत शहंशाह। कोई खास बात नहीं, जरा सा ये ठीक नहीं है।
0: ये जुर्माना तुम जरा सा अच्छी बात समझ रही हो, अगर मार बार मेरा तू सुनेगी
1: नहीं नहीं
0: उन्होंने नीचा हो जाएगा।
1: प्राणनाथ उन्होंने शायद आगाह किया है कि आप आ जाएं, पता नहीं क्या बात है, और नहीं आएंगे तो जुर्माना होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी कि आज जुर्माना हो गया है आपके ऊपर।
0: अच्छा मैं नहीं जाता हूँ तो जुर्माना दिया कहाँ से जाएगा?
1: कहाँ से दिया जाएगा?
0: क्या उपाय?
1: ये तो आप जाने महाराज, मैं क्या जानू। नहीं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, बड़े प्यार के साथ आपसे विनती कर रही हूँ कि इस समय आधी रात के समय आप ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और रही जुर्माने की बात, आपको जुर्माने की चिंता पड़ गई है क्या?
0: चिंता की बात नहीं है।
1: अरे आप समझ रहे होंगे जुर्माना, मेरी समझ में तो यही आ रहा है इनको पढ़ने के बाद में परमाने को कि अभी जुर्माना हुआ नहीं है, हो सकता है।
0: मैं नहीं जाऊंगा तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
1: ठीक है, अरे एक दिन का 1,00,000

0: मैं चुका दूंगी।
1: कहाँ से?
0: ये क्या है?
2: ये रानी तेरे हार की और क्या मुझको दरकार, नौकर का खजाना मेरे रहे हर घड़ी।

0: इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। जाऊंगा जरूर मैं,
1: आज जरूर जाएंगे। हाँ। तो फिर मुझे ब्याह करके बुलाएंगे।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राम चतुर मलिक का ध्रुपद गायन। निबद्ध है राग दरबारी में, पखाबज पर संगत की है कपिलेश्वर मलिक ने।

शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे राम चतुर मलिक का ध्रुपद गायन। निबद्धता राग दरबारी में पखावज पर संगत कर रहे थे कपिलेश्वर मलिक। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद
0: राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपने उनकी पार्टी

होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।